अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Gio Windows. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Cool song. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: cool song.

Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Jio Windows. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: सुरदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:08 हो चुके हैं। यह है बिंदास मॉर्निंग्स। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम यहां पे आ चुके हैं आपके साथ 4 घंटे बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए और याद दिलाने के लिए कि भाव मुझाए मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट बिंदास होनी चाहिए। और मॉर्निंग को यहाँ बिंदास बनाने के लिए बातें तो हम बहुत प्यारी प्यारी लेकर आए हैं, मगर गाने भी आपके लिए क्यूट क्यूट लेकर आए हैं।

मगर फिलहाल यहाँ पे हम शो को किक स्टार्ट करने के लिए प्ले करेंगे इश्क मस्ताना मोहित चौहान और नारगिस तेजी की आवाज में फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। और जानी इंतजार किस बात का है, जल्दी जल्दी मैसेज भी भेज दीजिए 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी।

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:19 हो रहे हैं और यहां पे हमारे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं। मैरोनिसा जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और प्यारा बिंदास मॉर्निंग जो है हम विश करते हैं। ऋषिन का मैसेज आया है, ऋषिन ने मैसेज भेजा है, लिखा है स्टे हैप्पी गुड मॉर्निंग जियो बिंदास, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास मॉर्निंग हम विश करते हैं। और उसके साथ साथ मुझे जुल्फी भाई का मैसेज आया है, लिखा है अ ब्यूटिफुल ड्रेस कैन चेंज द पर्सनैलिटी बट ब्यूटिफुल बिहेवियर कैन चेंज द लाइफ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, देखिए बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहन के अगर इंसान बुरा है तो उन कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं है, सच बताएं तो अंदर से जो इंसान है वो अगर अच्छा है तो आप कुछ भी पहनो भाई, आपकी अच्छाई दिखेगी। मगर आजकल की दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है कि कपड़ों का ब्रांड देके जज करने लग जाते हैं कि अरे कौन सा इंसान है, कैसा इंसान है करके। बट क्या करे, कैरेक्टर आजकल कौन जज करता है? आजकल तो हम मनी जज करते हैं, आजकल तो हम कपड़े जज करते हैं, आजकल तो हम स्टेटस जज करते हैं। बट इन सब का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ये ना हो तो इंसान बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, चाहिए आजकल के ज़माने में कंफर्टेबल लाइफ के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, मगर इनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है जिस पे सारी चीज़ें खड़ी होती हैं, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर अगर है तो बहुत बढ़िया है। ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि नॉलेज ब्रिंग्स यू पावर बट कैरेक्टर गिव्स यू रेस्पेक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही बात बताते हुए अगले मैसेज की ओर जाते हैं। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज जो है आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग, प्रेइंग दैट द न्यू डे ब्रिंग्स यू लव एंड लाफ्टर, प्लेजर एंड पीस, ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। और आसमा का मैसेज आया है, लिखा है टू थिंग्स मोर देन एनीथिंग एल्स डिफाइन योर डे एंड योर डेली लाइफ, योर पेशेंस व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग एंड योर एटीट्यूड व्हेन यू आर नॉट। गुड मॉर्निंग करके बिल्कुल सही बात कही है, मैं शत प्रतिशत इस बात से सहमत हूं। और थैंक यू सो मच आसमा मैसेज मुझे भेजने के लिए। अबरार भाई का मैसेज आया है, वो भी देख लेते हैं। अबरार भाई ने भी एक प्यारा सा फोटो भेजा है और लिखा है टॉक टू समवन हु मेक्स यू हैप्पी बट नेवर मिस टू टॉक टू समवन हु फील्स हैप्पी टू टॉक टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बात कही है आपने, मैं इस बात से 200% क्या है सहमत हूँ, क्योंकि बिल्कुल सही बात कही है। और थैंक यू सो मच ये मैसेज करने के लिए। नाजनी जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ ब्राइट ब्यूटिफुल डे फिल्ड विद पॉजिटिव एनर्जी एंड एंडलेस अपॉर्चुनिटीज टू मेक द मोस्ट ऑफ योर डे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। और फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि थोड़ी देर बाद हम जब आएंगे तो एक सवाल लेकर आएंगे, तो तैयार हो जाइए। कूल
1: सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Jio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.
5: Hi everyone, मैं हूँ आपकी कशिश, और पिछले दो दिनों से हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की, और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की।
6: Hi everyone, I am Dr. Anila, Specialist Dermatologist, Aster Medical Center, Doha. Of course, everybody has to look at the contents, which is written very clearly at the back.
7: So what are the key red flags that we should look for when we are buying skin care products?
6: So first of it is the harsh soaps, which is normally written as sulfates, sodium lauryl sulfates. It can be extremely harsh. And the second one is mostly preservatives. It can sometimes result in severe allergic reaction. We all fond of good smell, scents always, right? And it can cause some serious reaction. Always go for a product which is unscented and look for the label which is
5: इस इनिशिएटिव को शुरू करने का हमारा मोटिव था आपको अवेयर करना, लेकिन आप सबके अमेजिंग रिस्पांस ने मेरा दिल जीत लिया है।
8: आई थिंक ये सेगमेंट मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है, एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है।
9: वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखे एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स वो पलट के देखे। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट।
5: नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक और नए एक्सपर्ट।

0: अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में हमने सुना ये बहुत ही खूबसूरत गाना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेश। स्टेशन क्लॉक में 6:35 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एक सवाल लेकर मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में। चो शुरू करते हैं।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो भाई सवाल पूछने से पहले जरा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं। आज का दिन काफी स्पेशल है, काफी क्यूट भी है, क्योंकि आज जो है अमीषा पटेल का बर्थडे भी है। और अमीषा पटेल का नाम जब भी हम लेते हैं तो हमारे दिल में एक मूवी का नाम दौड़ कर आ जाता है, वो है कहो ना प्यार है, जो उनका डेब्यू मूवी भी था। साथ ही साथ ऋतिक रोशन का भी वो डेब्यू मूवी था और उस मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। एक ही साल में उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सेरेमनीज में 92 अवार्ड्स मिले थे, जो एक गिनेस रिकॉर्ड भी है। और मेरा सवाल ये है कि ये जो मूवी है कहो ना प्यार है, उसका रिलीज डेट क्या है ये आपको बताना है। कहो ना प्यार है मूवी का रिलीज डेट क्या है ये आपको मुझे बताना है तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले, अभी के अभी। और यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा गाना आपके लिए हम प्ले करना चाहेंगे।

हाँ हाँ मजा आ गया यार। आक्रोश मूवी का गाना जावेद अली की आवाज में, तो गाना सुनिए, एंजॉय करिए और तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी मेरे सवाल का जवाब भेज दीजिए। कहो ना प्यार है मूवी का रिलीज डेट क्या है, आप मुझे मैसेज कीजिए। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में सवाल पूछा था कि कहो ना प्यार है मूवी का रिलीज डेट जो है कौन सा है, और यहाँ पे मैसेजेस आए मेरे पास। सरिता जी ने मैसेज किया है, बोला कि गुड मॉर्निंग सुदेश जी, कल बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो कल आईसीसी लाइब्रेरी के ओपनिंग के लिए गया था मैं, वहाँ पे सरिता जी से मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मिलकर। और उन्होंने लिखा है आंसर, मैंने गूगल किया फोर्टीन जैन 2000, मैंने हूँ को जून पढ़ दिया था, मेरी गलती है, ठीक है, वो ब्रेन फॉग कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे लगता है। और लिखा है हैव अ ब्लिसफुल डे अहेड, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफ़ी प्यारा दिन मैं विश करता हूँ। उसके साथ साथ मुझे इमरान भाई का मैसेज आया है, इमरान भाई ने मुझे मैसेज किया है, लिखा है कि 14 जनवरी 2000। और एक और मैसेज आया है मेरे पास जहाँ पे मैसेज लिखा है 14 जनवरी 2000 करके, नाम नहीं भेजा उन्होंने। और असलम भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी यही मैसेज लिखा है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आप सभी ने जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही जवाब दिया है, तो तालियां बजेंगी आपके लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसी खुशी में काम करते हैं, गाना सुनते हैं पति पत्नी और वो दो मूवी का, और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:06 हो रहे हैं। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो लगा जेंजी वालों का हेयर स्टाइल मैंने कर लिया, और मैंने सोचा क्यों ना करूं भाई, स्टैटिस्टिकली मैं भी जेंजी हूं। अब ये यार कुछ तो लोचा है लगता है आज मेरे जबान के साथ, मेरी जबान फिसल रही है थोड़ी। मैं थोड़ी देर में पानी पीकर आता हूं, मगर अभी यहां पे मौसम का हाल बता देते हैं। देखिए मौसम इज नॉट मौसमिंग, ठीक है। आजकल थोड़ा मौसम खफा खफा लग रहा है, गर्मी बढ़ रही है। 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है अभी दिखाया जा रहा है, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा बह रही है, और मेरे मन में एक ही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा थोड़ी ठंडी हो सकती है क्या? हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर दिक्कत है। और आपसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग अच्छे से पानी पीजिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा, लाइट कलर्ड क्लोथिंग जो है यूज करने की कोशिश कीजिएगा। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabak Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: सच बताऊं दो मिनट के लिए मैं भूल गया कि भाई लाइव आ रहा है क्योंकि मैं पानी पीने गया था, दौड़ के आया हूं मैं यहाँ पे। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:15 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है मुझे एक फोटो भेजा है मोहम्मद असलम भाई ने, और उन्होंने जो है बहुत ही प्यारा सा एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है गुड मॉर्निंग करके, हैप्पी ट्यूसडे करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफ़ी प्यारा ट्यूसडे मैं विश करता हूँ। उसके साथ साथ मुझे अनिल जी का मैसेज आया है, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है, उनके गाड़ी के बाहर का एक नज़ारा वो दिखा रहे थे, रोड का नज़ारा दिखा रहे थे, काफ़ी खाली खाली रोड, बढ़िया। और उसके खाली खाली रोड मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियाँ हैं, मतलब खुला खुला रोड एकदम मस्त लग रहा है। और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है इरफान भाई का, इरफान भाई ने भी मुझे मैसेज भेजा है, उन्होंने मतार कदीम के पास वाले के एरिया का मैसेज भेजा है, वो कतर एयरवेज के बिल्डिंग के पहले का जो एरिया है वहाँ का। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सिमिलरली मुझे एक और मैसेज आया है, और ये मैसेज आया है मुझे संदीप जी का। संदीप जी ने मैसेज किया है और बोला है कि हेलो सुदेव, गुड मॉर्निंग, कल शाम को हमने देखा था आपको ICC लाइब्रेरी के इवेंट के लिए, अच्छे थे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, दिल खुश हो गया ये सुन के। बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मतलब आप मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, मैं मुस्कुरा जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, इससे बड़े और क्या चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। थोड़ी देर बाद जब हम आएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे फिटनेस के बारे में। फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: तुझे मेरी कसम मूवी का टाइटल ट्रैक हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन ब्लॉक में 7:30 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई वक्त हो चुका है फिट है तो हिट है का।
1: फिट है तो हिट है।
0: देखिए, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर थोड़ा अपने आप को फिट और एस्थेटिक बनाना चाहते हैं और आपने ये सोचा है कि भाई मैं हर दिन वर्कआउट करूंगा तो मेरी बॉडी बनेगी बढ़िया वाली, तो ऐसा नहीं है। मिथ ये है कि रिजल्ट्स के लिए रोज वर्कआउट करना जरूरी है, मगर क्या सही में ऐसा है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई, रिसर्च के अकॉर्डिंग फिटनेस इंप्रूवमेंट सिर्फ वर्कआउट के दौरान नहीं बल्कि रिकवरी पीरियड में भी होते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रेस और डैमेज क्रिएट होता है। बॉडी इन टिश्यूज को रिपेयर करके उन्हें पहले से स्ट्रॉन्गर बनाता है और ये प्रोसेस मोस्टली रेस्ट के दौरान होता है। रेस्ट REST। मगर आजकल के जमाने में रेस्ट को कोई इंपॉर्टेंट तरीके से देखता ही नहीं है या फिर एक इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटली फिजिकली रिकवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए रेस्ट बहुत ही जरूरी है। और अगर बिना प्रॉपर रिकवरी के हर दिन इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे तो मसल रिपेयर इनकम्प्लीट हो जाएगा, फटीग अक्यूमुलेट हो जाएगा, परफॉर्मेंस ग्रेजुअली डिक्लाइन हो सकती है और इंजरी के रिस्क बढ़ जाएंगे। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि ओवर ट्रेनिंग से मोटिवेशन कम हो सकता है, स्लीप क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है, रिकवरी हॉर्मोन्स और नर्वस सिस्टम पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ सकता है। इसलिए वर्कआउट डेज और रिकवरी डेज का बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जब से फिट है तो हिट है हमने शुरू किया है, तब से जब भी हमने फिटनेस के बारे में कोई बात की उसमें स्लीप के बारे में कई बार हमने जो है मेंशन किया है कि प्रॉपर स्लीप इंपॉर्टेंट है और एडिक्वेट प्रोटीन और न्यूट्रिशन जो है आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और ओवर ट्रेनिंग मत कीजिए और बढ़िया तरीके से वर्कआउट कीजिए, रेस्ट करिए, रिकवर कीजिए और बिंदास रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabak Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, ये है बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है हमें मिली है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। कतर के शूरा काउंसिल ने कहरामा के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को मजबूत बनाने के फ्यूचर प्लान्स पर जो है चर्चा की थी। उसमें से कुछ की पॉइंट्स जो निकल कर आए हैं वो ये हैं: इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की सिक्योरिटी को और बेहतर बनाना, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करना, सब्सक्राइबर सर्विसेज और डिजिटल सर्विसेज को मॉडर्नाइज करना, नेटवर्क एफिशिएंसी बढ़ाना और एनर्जी या फिर वाटर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करना। उसके साथ साथ कतर नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटजी 2030 के टारगेट्स को सपोर्ट करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें बताया गया था। और सेशन में कारामा के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी अब्दुल्ला बिन अली अल थयाब और स्पेशलिस्ट ने काउंसिल मेंबर्स को रोड मैप के बारे में जो है ब्रीफ किया था। और शूरा काउंसिल स्पीकर हिज एक्सेलेंसी हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने कतर के लीडरशिप के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स की तारीफ की और कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना कतर नेशनल विजन 2030 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से जो है डिस्कशंस हुए थे, जिसके की पॉइंट्स मैंने थोड़ी देर में आपको बताए थे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि थोड़ी देर में ऐसे और अपडेट्स के साथ ऑलिव अपडेट्स में हम वापस आएंगे और बात करेंगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बात करेंगे, टेस्ट मैच के बारे में जो इंडिया जीत गई थी, और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच की कहानी भी आपको सुनाएंगे। तो तैयार रहिए, फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले 2 दिनों से हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की।
2: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनिला, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, आस्ट मेडिकल सेंटर, दोहा। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू लुक एट द कंटेंट्स व्हिच इज रिटन वेरी क्लियरली एट द बैक।
3: सो व्हाट आर द की रेड फ्लैग्स दैट वी शुड लुक फॉर व्हेन वी आर बाइंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स?
2: सो फर्स्ट ऑफ इट इज द हार्श सोप्स व्हिच इज नॉर्मली रिटन एज सल्फेट सोडियम lauryl sulfates. It can be extremely harsh. And the second one is mostly preservatives. It can sometimes result in severe allergic reaction. We all fond of food smell scents always, right? And it can cause some serious reaction. Always go for a product which is unscented and look for the label which is fragrance free.
1: इस initiative को शुरू करने का हमारा motive था आपको aware करना, लेकिन आप सबके amazing response ने मेरा दिल जीत लिया है।
4: I think ये segment मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है। एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स वो पलट के देखें। सो ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट।
1: नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक और नए एक्सपर्ट।
6: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
8: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
9: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: Best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabak Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
4: आई रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स दिस इज रणवीर सिंह स्टे ट्यून्ड

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:17 हो रहे हैं और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के टेस्ट मैच के बारे में, जिसे इंडिया ने बहुत बड़े मार्जिन से जीता। एक इनिंग्स और 300 रन से जो है इंडिया ने टेस्ट मैच जीता। ये वन ऑफ टेस्ट था और 1-0 से जो है इंडिया जीत चुकी है, लीड ले चुकी है, आगे सीरीज है नहीं बट हाँ। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच के बारे में जो इंडिया ने जीता था। मैं बहुत ही डिटेल में उस स्टोरी के बारे में आपको नहीं बताऊँगा, मगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट मैच था इंडियन टेस्ट मैच की हिस्ट्री में, वर्ल्ड टेस्ट मैच की हिस्ट्री में। तो 2001 में कोलकाता में जब मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 16 मैचेस जीत चुकी थी, ठीक है, 16 टेस्ट मैचेस जीत के वो बाकी वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को हरा के, क्रिकेटिंग नेशंस को, टेस्ट प्लेइंग क्रिकेटिंग नेशंस को हरा के इंडिया को फाइनल फ्रंटियर बोल के आ रहे थे। और उसमें उन्होंने एक टेस्ट मैच जीता भी था, फिर आए थे कोलकाता में जहाँ पर उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया को पछाड़ा भाई, बहुत मारा। मगर उसके बाद जो हुआ, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। सोच के देखिए, दो प्लेयर्स पूरा दिन बैठ के, पूरा दिन, द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण, और द्रविड़ की तबीयत खराब थी, उन्हें फ्लू था। वीवीएस लक्ष्मण को गेम खेलने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि भाई आप मत खेलो क्योंकि आपका स्पाइन जो है टेल बोन के वहां से थोड़ा टिल्टेड है, मत खेलो, ये आपको कुछ टाइम के लिए बेडरिडन करवा सकता है, कुछ टाइम के लिए आपको गेम से हटना तक पड़ेगा, इतना सीरियस इशू है। बट नहीं, उस दिन वो लोग खेले, एक प्लेयर टिल्टेड स्पाइन के साथ, एक प्लेयर जुखाम बुखार और बहुत ही बुरी हालत के साथ, ये दोनों खड़े रहे पूरा दिन वो खड़े रहे और ऑस्ट्रेलिया के हाथ से उन्होंने जीत को छीन लिया, लिटरली छीन लिया। उस मैच के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने बोला है कि वी सैट डाउन एंड वी यू नो हैड अ कॉन्वर्जेशन, वी हैड टू ईट आवर ईगोस, उन्होंने बोला। और वो कौन सी ऑस्ट्रेलियन टीम थी? लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन टीम, क्रिकेट के हिस्ट्री में सबसे लेजेंडरी टीम जिसको हराना नामुमकिन के करीब था। इतनी बढ़िया टीम, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, और स्टीव वॉ का कैप्टनसी का एंड का टाइम था वो। सोच के देखिए, लेजेंडरी प्लेयर से भरी पड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम को उन्होंने जो हरा।

0: वो मैच मैं बार बार इस मैच के बारे में बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है जो कभी भूला नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इस मैच के टाइम पे ईडन गार्डन्स के स्टेडियम में से लोग उठ के चले गए थे कि भाई अब क्या ही देखना, इंडिया तो हारी गई है। वापस आए सारे लोग, वापस आए और लोग वापस आए। जब मैच खत्म हुआ तो स्टेडियम में लोग भरे हुए थे। तो इससे हमें यही पता चलता है कि भाई लाइफ में कभी सिचुएशंस हार्ड होती हैं, हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, बस डटे रहना होता है, अड़े रहना होता है, वहीं पे टिके रहना होता है, तो शायद आप एक बहुत ही बढ़िया मिराकल के साथ जीत सकते हैं। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio
1: Olive, Bindas. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है एक बहुत ही प्यारी बात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो आज मैं ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें ब्राज़ील के एक प्लेयर ने बोला था कि गिव ब्राज़ील द रिस्पेक्ट वी डिजर्व करके। नोबडी एल्स हैज 5 stars ऑन देयर चेस्ट, वी हैव प्लेयर्स हु प्ले फॉर टॉप टीम्स करके जो है ब्राज़ील के प्लेयर ने ऐसे बोला है। और मैं सच बताऊं तो मैं एक बहुत बड़ा ब्राज़ील फ़ैन हूं, मुझे ब्राज़ील की टीम बहुत पसंद है और बहुत सालों से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ब्राज़ील वर्ल्ड कप उठाएगी। देखिए इस बार अगर हम चांसेस की बात करें ब्राज़ील के, तो चांसेस तो हैं, चांसेस बनते हैं, बट एक वो एक ऑरा होता है ना एक टीम का, जैसे कि 2002 में जो टीम थी उसका ऑरा बहुत अलग था, इवन 2006 में जो टीम थी उसका भी ऑरा बहुत अलग था, बहुत बढ़िया टीम थी, मगर फ्रांस ने बहुत बढ़िया खेला यार उस टाइम। जिडेन ने जो मैजिक दिखाया पिच में, मतलब मानना पड़ेगा उस एक मैजिक के कारण जो है लेजेंडरी ब्राज़ील टीम जो है हार गई थी उस एक इंसान ने। और जिनेडिन ज़िदान के बारे में जो है बोला भी है सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने कि मुझे ज़िदान दे दो और 11 वुडन क्या कहते हैं लॉग्स दे दो, मैं तब भी मैच जीत जाऊंगा करके। तो वो था उस बंदे का मैजिक। तो अगर इस बार अगर ब्राज़ील के चांसेस के बारे में बात करें तो देखिए चांसेस ज़रूर हैं। ब्राज़ील के जो टॉप प्लेयर्स जो टॉप टीम्स के लिए खेल रहे हैं अच्छे फॉर्म में हैं, इवन PSG के लिए एक प्लेयर खेल रहे थे प्लेइंग 11 में, वो भी ब्राज़ील के प्लेइंग 11 में है, तो चांसेस आर देयर, देयर आर गुड चांसेस, मगर कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है। अपने जर्सी में अगर 6ठा स्टार ब्राज़ील को लगवाना है तो इस बार बहुत तगड़ी मेहनत जो है हमें पिच में देखनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी उन्हें, तब जाके ही वो चेंजेस जो है देख पाएंगे। और बहुत सालों से जो है ब्राज़ील इंतज़ार भी कर रहा है, लास्ट वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने 2002 में जीता था, 2002 से लेके अगर हम अभी तक देखें तो इतने साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 24 साल निकल चुके हैं और अभी तक एक वर्ल्ड कप नहीं आया है। क्वाइट डिस्ट्रेसिंग फॉर अ फैन, बट या देखते हैं किस तरीके से वो इस बार जो है अपने आप को प्रूव करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम गाना सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड का।

0: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabak Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply. लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन. सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6-10 बिंदास मॉर्निंग में.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल जूलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
0: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है काफी बढ़िया कुछ अपडेट हम लेकर आए हैं आपके लिए। एप्पल ने जो है इंट्रोड्यूस किया है सीरी AI, प्रोफाउंडली मोर केपेबल एंड काफी बढ़िया पर्सनल असिस्टेंट। और बहुत टाइम से जो है बात हो रही थी कि एप्पल जो है अपने इंटेलिजेंस में उतना काम नहीं कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना उन्होंने बोला था उसके हिसाब से तो हमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं है। बट अभी WWDC में जो उन्होंने लॉन्च किया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी चेंजेस जो हैं एप्पल इंटेलिजेंस में आए हैं। एंड सीरी इज़ ऑल्सो पावर्ड बाई एप्पल इंटेलिजेंस। सीरी AI जो है एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ साथ सीरी क्या क्या कर सकता है उसमें छोटी सी चीज़ अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये एक कॉन्वर्जेशनल असिस्टेंट होगा जो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ये सब रखेगा, ब्रॉड वर्ल्ड नॉलेज रखेगा, ऑन स्क्रीन अवेयरनेस रखेगा और ये यूज़र्स को उस टाइम पे क्या चाहिए वो फाइंड करने में हेल्प करेगा। वेब से क्वेश्चंस जो है आंसर करेगा वर्चुअली किसी भी टॉपिक में। और देखिए अगर देखा जाए तो ChatGPT ऑलरेडी ये सब कर रहा है मगर एप्पल थोड़ा पीछे है। मैंने कई बार नोटिस किया है कि एप्पल कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा पीछे हो जाता है ऐसे फीचर्स में जो ऑलरेडी बाकी सारे ब्रांड्स लेकर आए हैं। बट लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें धीरे धीरे एप्पल लेकर आता है, एप्पल इंटेलिजेंस में क्या ब्रेक थ्रू लेकर आता है। फिलहाल यहाँ पे यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

योयो हनी सिंह और जैस्मिन की आवाज में किक मूवी का गाना हमने सुना। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एप्पल के नए इनोवेशन के बारे में, नए सिरी ऐप के बारे में। उसके साथ साथ और भी नए एडिशंस जो हैं एप्पल ने इंट्रोड्यूस किए हैं। विजुअल इंटेलिजेंस एक्सपेंशन, कैमरा ऐप में भी नया सिरी मोड होगा। फूड के न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस और स्क्रीन कॉन्टेंट को भी समझ सकता है। आईफोन के साथ अब आईपैड, मैक और विजन प्रो पर भी ये फीचर जो है अवेलेबल है। राइटिंग टूल्स की अगर हम बात करें तो ईमेल, मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स लिखने में एआई हेल्प, ड्राफ्ट्स जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा है। टेक्स्ट रीराइट और इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रामर, पंक्चुएशन और प्रूफ रीडिंग ऑटोमेटिकली करेगा। प्राइवेसी फोकस के ऊपर अगर हम बात करें तो एप्पल ने कहा है कि सिरी एआई को प्राइवेसी फर्स्ट आर्किटेक्चर के साथ डिजाइन किया गया है। ज्यादा प्रोसेसिंग जो है वो डिवाइस पर ही होती है। क्लाउड प्रोसेसिंग के दौरान भी पर्सनल डेटा स्टोर नहीं किया जाएगा, ये एप्पल ने वादा किया है। और अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डेवलपर्स के लिए टेस्टिंग जो है अब शुरू हो चुकी है। पब्लिक बीटा ले इस साल थोड़ी टाइम बाद आएगी। iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 और visionOS 27 में अवेलेबल होंगे ये फीचर्स। और सपोर्टेड डिवाइस में iPhone 15 Pro और उसके बाद के सारे मॉडल्स जो हैं शामिल हैं। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। है जवानी तो इश्क होना है मूवी का टाइटल ट्रैक सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:18 होने वाले हैं और यहाँ पे जो है एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिविया आपके साथ शेयर करने के लिए हम आ चुके हैं एक सवाल के माध्यम से, वो भी फीफा के बारे में।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
0: तो भाई आज का सवाल, अभी का सवाल ये है कि जितने 48 टीम्स जो क्वालिफाई हुए हैं इस बार के वर्ल्ड कप के लिए, उनमें से 4 टीम्स जो हैं अपने फीफा वर्ल्ड कप का डेब्यू अपीयरेंस कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से टीम्स हैं, वो 4 टीम कौन कौन से हैं जो अपने फीफा वर्ल्ड कप का डेब्यू अपीयरेंस जो है इस साल दे रहे हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी मुझे आप मैसेज कीजिए, बताइए मेरे सवाल का जवाब क्या है। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने एक मैसेज पूछा था कि भाई अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें 48 कंट्रीज खेल रहे हैं, इसमें चार नए कंट्रीज जो हैं डेब्यू कर रहे हैं, कौन कौन से वो कंट्रीज हैं। और मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, और यहाँ पे मैं बता दूं कि सब ने बिल्कुल सही मैसेज भेजा है मुझे। अनिल जी ने मैसेज भेजा है, राजीव जी ने मैसेज भेजा है, अहमद भाई ने मैसेज भेजा है, अनीस भाई ने मैसेज भेजा है, जुल्फिकर भाई ने मैसेज भेजा है, और मुझे साथ ही साथ रश्मिका जी ने मैसेज भेजा है। सब ने बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया है। तो जो चार कंट्रीज़ हैं जो इस बार डेब्यू कर रहे हैं वो है उज़्बेकिस्तान, और उसके साथ साथ जॉर्डन, उसके साथ साथ पोर्चुगीज में बोले तो काबो वर्जे या फिर केप वर्ड, और एक और कंट्री है जिसका नाम सुन के मैं थोड़ा अचंभित रह गया था। मैं बोला कि भाई ये कौन सी कंट्री है, ये कैसे आ सकता है, ये थोड़ा मेरे लिए नया था, बट बाई फिगर्ड इट आउट, मैंने ढूंढ के निकाल ही लिया। तो द कंट्री इज क्यूरासाओ करके एक कंट्री है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और बहुत छोटा सा एक आइलैंड नेशन है ये। और ये चार कंट्रीज जो हैं अपना डेब्यू कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में, इनका पहला एडिशन होने वाला है। और सही जवाब दिया आप लोगों ने, तो तालियां भाई आप सभी के लिए यहाँ पे। और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं आमिर जमाल की आवाज में, मर्डर मूवी का। भाई अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान भाई एक तरफ, और हम इमरान भाई के साथ। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेला जादू।
2: हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले दो दिनों से हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की।
3: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनिला, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, आस्ट मेडिकल सेंटर दोहा। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू लुक एट द कंटेंट्स व्हिच इज रिटन वेरी क्लियरली एट द बैक।
4: सो व्हाट आर द की रेड फ्लैग्स दैट वी शुड लुक फॉर व्हेन वी आर बाइंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स?
3: सो फर्स्ट ऑफ इट इज द हार्श सोप्स व्हिच इज नॉर्मली रिटन एज सल्फेट सोडियम lauryl sulfates. It can be extremely harsh. And the second one is mostly preservatives. It can sometimes result in severe allergic reaction. We all fond of food smell, scents always, right? And it can cause some serious reaction. Always go for a product which is unscented and look for the label which is fragrance free.
2: इस initiative को शुरू करने का हमारा motive था आपको aware करना, लेकिन आप सबके amazing response ने मेरा दिल जीत लिया है।
5: I think ये segment मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है। एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है।
6: वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स वो पलट के देखें। सो ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट।
2: नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक और नए एक्सपर्ट।
1: पलट मेरे यार।
7: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
9: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
10: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है और यहाँ पे हमें जाने का एक जो है टाइम आ चुका है। 10 बजने वाले हैं क्योंकि अभी 9:48 हो चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे मुस्कान आ जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, और सॉरी मुस्कान नहीं, यहाँ पे कशिश आएगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। हाँ, और कशिश एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट लेकर आई है जो है पलट मेरे यार, आप ज़रूर उसे चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सेगमेंट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप भी जान सकते हैं, और पलटना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जो है डिटेल में कशिश जो है आपके साथ बात करेगी। फिलहाल यहाँ पे मैं टाटा बाबाई करके निकलता हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए, दिन को बहुत बढ़िया तरीके से स्पेंड कीजिए, और साथ ही साथ एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, वो यही है कि अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें ज़रा दुआओं में याद रखिए। और यही बात बोलते हुए हम भी निकलते हैं। टाटा बाबाई, टेक केयर एंड कीप ऑन सिंग। जियो बिंदास।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे?
1: आएंगे नहीं, आ गए।
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक।
3: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

0: वाह जी वाह। इस गाने में एक अलग सी वाइब है, उदित जी का एक अलग वर्जन जो है वो हमें देखने को मिला है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड यार मतलब ये जो मौसम है कतर का, ये मुझे समझा रहा है कि कशिश तुम्हारी ना कोई एक पर्सनालिटी नहीं है, तुम जो है एक तरीके से बिहेव नहीं करती हो। जब लोग मुझसे कहते हैं ना ओ माय गॉड आई लव योर पर्सनालिटी, तो मुझे जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि आप कौन सी वाली पर्सनालिटी की बात कर रहे हो। एसी में रहती हूँ तो जो है मस्त एकदम बढ़िया वाइब आती रहती है, जैसे ही बाहर धूप में कदम रखती हूँ तो चिड़चिड़ करने लग जाती हूँ। जिस दिन जो है मेरे बाल अच्छे से बिहेव कर रहे होते, एक दिन पहले जहाँ पे शैम्पू मैंने किया होता है तो मेरा मूड बढ़िया रहता है, जब मेरे बालों में थोड़ा सा ऑयल आ जाता है तो मेरा मूड खराब हो जाता है। सो मेरा मूड जो है, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड कशिश स्ले कर रहे हो आप, नहीं नहीं नहीं स्ले नहीं कर रही हूँ मैं, शैम्पू कर रही हूँ मैं, इसीलिए अच्छा बिहेवियर है मेरा। सो बालों में शैम्पू करके, कंडीशनर लगा के, मास्क लगा के आ गई हूँ मैं आपसे बातचीत करने और आपकी लाइफ को मस्त बनाने के लिए। शो लाइफ मस्त है लेकर, एंड बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजों पे पिछले दो दिनों से हम बात कर रहे हैं। एट
1: पलट मेरे यार।
0: So, इसे कंटिन्यू रखेंगे और बाकी फिलहाल हमारे शो की, हमारे दिन की जो है शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग वाले गाने के साथ। गाने का नाम फिर अजनबी, मूवी का नाम चांद मेरा दिल। इस गाने को एंजॉय करके आइए आपकी कशिश के साथ और स्टे ट्यून्ड रहिए 106.3 रेडियो ऑल ऑफ़ पर। कहते रहिए जियो।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Geo
1: Windows. Time check. Brought to you by Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:14 यानी 10:14।
2: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
3: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
4: ओलिव सुन

0: मुझे भी लगा था कि मुझे जमाने लग जाएंगे भोपाल को पूरी तरीके से भुलाने में। हां जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूं आपकी कशिश और आपके लिए लाइफ मस्त है शो लेकर आ गई हूं। एंड जैसे मैं कह रही थी कि मुझे लगा था कि बहुत वक्त लगेगा मुझे भोपाल को भुलाने में, क्योंकि मैं जो हूं एक सर्टिफाइड भोपाल पगलू हूँ। मतलब जैसे मैं क्रिकेट पगलू हूँ, बिल्कुल उसी तरह भोपाल पगलू भी हूँ। सब अपने घर के लिए जो है बहुत पॉसेसिव होते हैं, अपने पसंदीदा शहर के लिए बहुत पॉसेसिव होते हैं, जहाँ पर आपने अपना बचपन गुजारा होता है। एंड उसे भूलने में ना ऐसा लगता है कि बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन कतर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो घर की याद दिला देती है, वरना बहुत सारी चीज़ें तो बेटर ही हैं। अब देखिए जो है गर्मी का सीज़न चल रहा है, समर वेकेशन जो है वो भी बच्चों की लगने वाली है। एंड मैंने कहीं इससे पहले ऐसा नहीं देखा था कि गर्मी में जितने भी लोग बाहर धूप में काम करते हैं उन सब का इतना ख्याल रखा जा रहा है। मतलब डिलीवरी वर्कर्स जो हैं, जो हमें फूड डिलीवर करते हैं या सामान डिलीवर करते हैं, वो अब धूप में डिलीवर कर ही नहीं रहे, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। खैर, अगर टेम्परेचर की बात करें सो आप यही कहोगे कि कशिश यार, आपके फ़ोन में तो हमेशा टेम्परेचर जो है वो कम ही दिखाता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। खैर, मेरे पास इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो करंट टेम्परेचर बता रहा है। एंड आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, एंड लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अगर आपको ये जो टेम्परेचर है ये वैरी करके दिखाया जा रहा है तो फोटो भेजो यार, मुझे क्लियर करो। सबके हिसाब से जो टेम्परेचर है मैं वो बताऊंगी। फिलहाल इस गर्मी से जूझते हुए ठंडे ठंडे एसी में बैठे हुए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो सुनने का मौका आ गया है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: आसमान के पार गाने का नाम है, इस गाने को एंजॉय करके आइए। फिर जरा रणवीर सिंह की बात करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

इमेजिन करके देखो कि देवदास एक बार फिर से बनती है एंड उसमें शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह होते हैं, कैसा लगेगा आपको बताइए। मैं तो देखो इमेजिन भी नहीं कर सकती। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए शो लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए, अब जो है रणवीर सिंह को बहुत सारे एक्टर्स का रिप्लेसमेंट जो है अगर सीक्वल मूवीज आती है तो उसमें कहा जा रहा है। एंड मुझसे कल मेरे ही कलीग पूछ रहे थे कि धुरंधर में तुम्हें क्या लगता है कि अगर रणवीर सिंह ना होते तो कौन होता। मैंने बोला विक्की कौशल हो सकते थे, वो भी बहुत सोचने के बाद मैंने बोला। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब रणवीर सिंह के अलावा हम किसी और को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। एंड यही चीज़ का फ़ायदा उठा के फरहान अख्तर ने जो है कोशिश की थी कि रणवीर सिंह को डॉन 3 से जो उन्होंने निकालने की कोशिश की है उसके बाद उन्हें बैन कराने में जो है वो सफलता पा ली, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अभी लेटेस्ट जो गॉसिप आई है उसके हिसाब से फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच में जो टेंशन चल रही है क्योंकि रणवीर सिंह ने डॉन 3 से जो है टाटा बाय बाय कह दिया एंड फरहान अख्तर ने इसका बहुत बड़ा इशू बना दिया एंड उन्हें बैन कराने की भी कोशिश करी। सो इसके बाद जो है जोया अख्तर, जो फरहान अख्तर की बहन है, उन्होंने रणवीर सिंह की जो है तरफ जो है बात कही है, उनका साइड लेते हुए फरहान अख्तर से बात करने की कोशिश करी। एंड इसमें कुछ भी ऐसे बहुत प्रॉफिटेबल तो निकल के नहीं आया, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स अब ये कह रहे हैं, जैसे पूनम ढिल्लो जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि एटलीस्ट जो पैसे आपने रणवीर सिंह को दिए थे वो पैसे वापस करने को रेडी हैं, वरना बहुत सारे एक्टर्स तो ये भी नहीं करते। सो इस बात पे मैं तो देखो रणवीर सिंह की साइड लेना चाहूँगी। फरहान अख्तर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो पहले भी जिस हिसाब से टीज़र को रिस्पॉन्स मिला था, रणवीर को रिस्पांस मिला था, उसमें वो खुश नहीं थे एंड वो वैसे भी शाहरुख खान को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। सो लेट्स सी कि इस गॉसिप वाले खेल में क्या कुछ आगे होता है। फिलहाल जन्नत मूवी का ट्रैक जो है मैं आपको सुना रही हूँ, उसे एंजॉय करो। केके की आवाज में ये गाना है, इसे सुनो और जल्दी से लौट के वापस आओ क्योंकि बहुत अमेजिंग बातें अभी हमें जारी रखनी है। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मेरे साथ बने रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

यार कभी कभी ऐसा लगता है कि किशोर कुमार जो है वो इतने अलग अलग टाइप के गाने गाते थे कि आप ये बता भी नहीं सकते कि ओ ये वाला गाना भी किशोर कुमार ने गाया है, ये वाला गाना भी किशोर कुमार ने गाया है। जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो जो है लाइफ मस्त है आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ ना मेरे दादू की ज़माने के गानों की, सो कई बार ऐसा लगता है मुझे कि यार शुरू शुरू में कि ये कौन सा गाना चल रहा है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन उसका फिर एक पार्ट आता है जिसके बाद मुझे समझ आता है ओ ये तो इंस्टाग्राम पे वायरल है। सो सब जो है वो पुराने पुराने गाने उठाकर उस पर कोई ट्रेंडिंग सी रील बना देते हैं एंड फिर हमको वो गाना अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा जो गाना है वो हम मिस कर जाते हैं एंड उसमें कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो टाइम टाइम पर वायरल होते रहते हैं। मैं बस आपसे ये कहूँगी कि जब भी हमको ऐसा गाना सुनाया करें तो थोड़ा ध्यान से सुना करो, हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेटेबल सा आपको पार्ट मिल जाए, लाइन मिल जाए जो आपके बहुत काम आ जाए। खैर रिलेटेबल बात जो है वो मैं आपसे करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ। सो एक बहुत ही काम की बात मैं आपको बताने वाली हूँ। सो अगर आप शॉपिंग जो है वो प्लान कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि यार किसी लग्जरी वाले ब्रांड से जो है शॉपिंग वॉपिंग करनी है लेकिन हो नहीं पा रहा था, बजट नहीं बन पा रहा था, तो मैं बताऊँ कि कतर का आउटलेट एग्जीबिशन जो है उसका आज आखिरी दिन है। दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी DECC वेस्ट बे में जो है ये एग्जीबिशन चल रहा है, जहां पर आपको सभी अमेजिंग वाले ब्रांड्स जो है उन पर अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे और ये सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चल रहा है एंड आज आखिरी दिन है तो काफी भीड़ भी होने वाली है। सो आई होप कि आप जो है इस एग्जीबिशन का पार्ट बन सको एंड इसी के साथ मैं ये भी होप करती हूँ कि अमेजिंग वाले गाने जो है वो भी आप रेडियो ऑलिव के साथ एंजॉय करते रहो। सो ये अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। डरने की बात नहीं है। गाने का नाम है अखियों से गोली मारे, पति पत्नी और वो मूवी का ट्रैक है, मीका सिंह और जैसे सुदेव कहते हैं लेजेंडरी तुलसी कुमार जी की आवाज में। एंजॉय करके आइए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:12.
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस. Serve with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3. Radio Olive, Jio Bindas.

वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम ने ना ये दृढ़ निश्चय कर लिया है, यानी ये पूरी तरीके से सोच लिया है कि अब तो इंस्टाग्राम को एक जादुई जगह, मैजिकल प्लेस जो है वो बना कर ही मानेंगे. क्योंकि इंस्टाग्राम ऐसी नई नई फीचर्स लेकर आ रहा है जो हमने कभी कहीं देखी भी नहीं है. मतलब एक अभी नया फीचर जो है वो इंस्टाग्राम टेस्ट कर रहा है, जहां पर जब भी आप किसी इन्फ्लुएंसर को कोई प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हुए देखते हो एंड वो उसे टैग करता है, सो पहले आप लिंक पे क्लिक करके जो है उसे देख सकते थे उसकी वेबसाइट पे जाके. लेकिन अब सपोज आपको एक रेड लिपस्टिक अच्छी लगी किसी इन्फ्लुएंसर पे एंड वो उन्होंने टैग करी हुई है, तो वो रेड लिपस्टिक आप AI के जरिए जो है ये देख सकते हो कि आप पर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी. बताओ यार, मतलब वाह भाई वाह इंस्टाग्राम, मेरे दिल की बात आपने जो है छीन ली है. ज़रूर अब कोई जेंजी बैठकर जो है वो इंस्टाग्राम को डिज़ाइन कर रहा है, या तो किसी लड़की ने, किसी मेरी गर्ली पॉप ने जो है ये ठान लिया कि इंस्टाग्राम को फुल्ली जो है ना फंक्शनल बनाएंगे, एक इंटरटेनमेंट ऐप से, कम्युनिकेशन ऐप से बढ़कर बनाएंगे. ऐसे और कौन कौन से फीचर्स हैं इंस्टाग्राम के जो आपको लगता है कि यार ऐसे सोशल मीडिया पे

0: आ जाने चाहिए, ये आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर जो है मुझे मैसेज करके। सो आपके मैसेजेस का मैं इंतजार करती रहूंगी। फिलहाल मुझ जैसा ही कूल जो है एक सॉन्ग जो है मैं आपको सुनाने वाली हूँ, सो इसे एंजॉय करो।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।
0: ये वही गाना है जिसपे मैं स्कूल के टाइम पे डांस किया करती थी। यस, हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग जो है वो मूवी का नाम है। हैप्पी एंडिंग कहीं नहीं हो रही है। दिव्या कुमार और शिफाली अलवारी।

अगर मेरे लाइफ का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो वो मतलब 90% यही होता, 10% मैंने होप छोड़ी कोई और अच्छा गाना।

106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूं आपकी कशिश एंड हल्ला मचाते हुए मैं आ चुकी हूं लाइफ मस्त है शो आपके लिए लेकर। एंड वक्त हो गया है किसी इंस्टाग्राम के फैशन ट्रेंड की बात करने का। अब देखो यार, बीइंग अ गर्ल्स गर्ल, मैं जो चीज़ मुझसे नहीं होगी मैं उसे गेटकीप नहीं करूँगी, मैं उसे अपने तक नहीं रखूँगी। अगर वो फैशन ट्रेंड है, वो वापस आया है ट्रेंड में, तो मैं आपको बताऊँगी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो कल मैं ऑफिस आने में मतलब ऑफिस की वैन में बैठने में आई थिंक 5-10 मिनट लेट हो गई थी, बिकॉज मैं एक घंटे से एक चीज़ करने की कोशिश कर रही थी एंड वो है एक स्कार्फ है मेरे पास, उसको एज अ बंडाना अपने सर पर बांधने की। मैंने इंस्टाग्राम की एक एक वीडियो, यूट्यूब की एक एक वीडियो, 14 मिनट्स, 15 मिनट्स, 32 मिनट तक की वीडियो देख ली बंडाना को किस तरीके से सर पे बांधा जाए। अब मुझे ये नहीं पता है कि मेरा जो बंडाना है उसका फैब्रिक बहुत स्मूथ है या मेरे बाल कभी कभी जो है वो स्मूथ बिहेव कर लेते हैं इसलिए वो खिसकता ही जा रहा था। लेकिन अगर आपके पास एक बंडाना है या आपके पास कोई ऐसा रुमाल है जिसे आप एज अ स्कार्फ यूज़ कर सकते हो या ऑलरेडी कोई सैटन का स्कार्फ है, सो आप उसे इस समर में बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टाइल कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम के ट्रेंड के अनुसार के अकॉर्डिंगली जो है सिर्फ सर पे अब बंडाना लगाने का फैशन नहीं है, आप अपने बैग में एज अ एक्सेसरी जो है उस बंडाना को यूज कर सकते हो, अपने जीन्स का जो लूप होता है जहां पे आप बेल्ट लगाते हो वहां पर उसे एज अ बो बांध सकते हो। एंड बंडाना के एन नंबर ऑफ यूजेस जो है, एन नंबर से जो है उसे स्टाइल करने का जो तरीका है वो इंस्टाग्राम पे इस वक्त बहुत ज्यादा मतलब बहुत बहुत बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। सो अगर आपके पास आपके वार्डरोब में एक बंडाना रखा हुआ है, एक स्कार्फ रखा हुआ है, सो उसे जो है निकालो, मतलब वो रखे रखे डबल नहीं हो जाएगा, उसे यूज करो अपने स्टाइल में, एक यू नो डिफरेंट क्वोशंट ऐड कर लो। और फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आपकी रेडियो सेट्स पर जो है वो आ रहा है, सो इसे एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास। अमित त्रिवेदी की आवाज में देवडी मूवी से।

0: बढ़िया तरीका है लोगों को ये बताने का, नाराजगी जताने का कि तुम्हें हमारी याद नहीं आती यार आजकल। आप लोगों को भी वैसे मेरी याद कहाँ ही आती है, कहाँ मैसेज कर रहे हो? 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, कब से बता रही हूँ, एक मैसेज नहीं किया आपने। केयर वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए जो है लाइफ मस्त शो लेकर आ गई हूँ। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार कशिश मतलब हम जो है अकेले बैठकर सिर्फ YouTube स्क्रॉल करते रह जाते हैं, OTT एप्स को जो है स्क्रॉल करते रह जाते हैं, लेकिन कोई एक अच्छा कंटेंट जो है वो नहीं मिलता और ना ही तुम बताती हो, कैसी दोस्ती है ये हमारी? तो देखो यार, मैं आपकी वो दोस्त हूँ जो सब से जो है अच्छी अच्छी मूवीज़, अच्छे अच्छे सीरीज़ जो है वो ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाऊंगी, जिन्हें आप फॉर फ्री जो है वो देख सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ आज की मूवी रिकमेंडेशन की, सो ये मूवी जो है सारे मेरे आर माधवन के फैंस के लिए, हाँ जी मैडी के फैंस के लिए मूवी है। एंड मैडी की जो इमेज हमने दिमाग में बना रखी है ना, वो स्वीट इनोसेंट वाली, उससे बिल्कुल हटकर ये जो मूवी है वो होने वाली है। मूवी का नाम है 13B फियर हैज अ न्यू एड्रेस। सो जैसे नाम से समझ आता है कि ये थोड़ी सी हॉरर मूवी होने वाली है। सो बिल्कुल सही आपने सोचा। इसे जो है काफी सारे क्रिटिक्स ने माधवन की करियर की सबसे आइकॉनिक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर कहा है। एंड अगर मैं बात करूँ स्टोरी लाइन की, सो स्टोरी लाइन यही है कि फ्लैट नंबर 13B में माधवन जो है वो शिफ्ट होते हैं, उनके साथ क्या कुछ होता है ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पॉइलर ना दूँ तो ही अच्छा होगा, आप खुद अगर इसे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो यूट्यूब पर आप जा सकते हैं, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस जो है वो माधवन ने दी है, यूनिक कॉन्सेप्ट है इस मूवी का, और 2009 में ये मूवी आई थी तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों ने इसे अभी तक देखा होगा। सो 13B फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अगर मूवी का नाम याद ना आए तो Instagram पे या WhatsApp पे आके मुझसे आप पूछ सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल एक ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनने का मौका जो है वो मैं आपको दे रही हूँ तो इसे गाने को एंजॉय कीजिए।
1: Song of the hour.
2: Ye gana.
0: चुनरी चुनरी लेट्स गो। ये वो गाना है जो पहले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप जैसे जैसे सुन रही हूँ वाइब आती जा रही है, तो एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास। और गाना सुन के जो है यहीं पे रहना, पलट मेरे यार पे इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं हमारे।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर
1: ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: यार मुझे सच में कभी कभी ऐसे ही लगता है कि अच्छे काम करने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए आई थिंक आप मुझसे मिलने का इंतजार ही कर रहे थे कि कशिश मिलेगी उसके बाद अच्छा अच्छा काम करेंगे। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो जो है लाइफ मस्त है आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ मस्त है पे पिछले दो दिनों से हम जो है किसी अमेजिंग चीज पर बात कर रहे हैं और वो है पलट के देखने के लिए। और मैं आपसे कह रही हूँ कि पलट मेरे यार गाइस, क्या मैंने आपके बोलने का इंतजार किया था? सो पलट मेरे यार मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एंड बहुत अमेजिंग रिस्पांस जो है वो आप लोगों से मुझे मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड लोग भी मुझसे कह रहे हैं कि कशिश ऐसा इनिशिएटिव जो है लाते रहा करो।
1: पलट मेरे यार,
0: तो भैया पलट मेरे यार के तहत हमने बहुत सारी बातें की। हमने ये बातें की कि खाने की जो चीज़ें होती है उनमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खरीदते हुए देखनी होती है। कॉस्मेटिक्स की बात हमने कल की, लेकिन आज एपिसोड 3 में हम जो है ऑल ओवर हर चीज़ की बात करने वाले हैं एंड आपके दिमाग की बात करने वाले हैं कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो तो ऐसा क्या देखते हो, ऐसे क्या देखकर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जो आप कंटेंट देख ही नहीं पाते हो। हाँ जी, सीनियर साइकोलॉजिस्ट जो है वो हमारे साथ थोड़ी सी देर में जुड़ेंगे, हम उनके साथ बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले अब 3 दिन हो गए हैं, आज एपिसोड 3 है पलट मेरे यार का और फाइनल एपिसोड है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। सो जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर, ऑडियो नोट भेजिए, मैसेजेस कीजिए कि कैसा लगा आपको आखिर रेडियो ऑलिव का ये इनिशिएटिव एंड क्या अब आप पलट के देखने के लिए जो है इनकरेज हुए हो या मुझे और बोलना पड़ेगा। सो 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर जल्दी जल्दी से आ जाओ एंड मुझे मैसेज कर दो। और कुछ लोगों ने कल भी मैसेज किया था, सो वो क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग गाना कॉकटेल 2 मूवी से, अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में, गाने का नाम तुझको, एंजॉय करके आओ। पलट मेरे यार पे बातचीत जो है वो जारी रखेंगे, स्टे ट्यून्ड रहिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: भाई कभी कभी बॉलीवुड बहुत रोमांटिक गाने बना देता है, और ये जो गाना है ना एक उसी गाने का एग्जाम्पल है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर मैं आपसे कह रही हूँ
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
0: और ये मैं क्यों कह रही हूँ पिछले दो दिनों से, ये समझाने का भी आपको वक्त आ गया। देखो एक रिसर्च जो है मैं अभी पढ़ रही थी, अगर आप चाहो तो आप भी ChatGPT, Gemini या Claude किसी से भी पूछ सकते हो। सो उसमें जो है ये रिसर्च आया है कि अगर मैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की बात करूँ तो लोग जो है 60-70% ऐसे हैं जो कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके बैक को यानी कंटेंट को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। 81% लोग जो है सिर्फ डेट और प्राइस जो है वो देखते हैं, एंड 30% लोगों को जो है समझ नहीं आता है कि पीछे के कंटेंट क्या लिखे हुए हैं। वहीं अगर मैं कतर की बात करूं तो 60% कंज्यूमर जो है वो बिना देखे जो है सामान ले लेते हैं। एक मेजर चीज़ ये है कि कतर में सामान जो है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है, सो यहाँ पर एक हेल्थ इशू नहीं आता है, मेजर दिक्कत नहीं आती। बट 40% शॉपर्स जो है वो इंस्पेक्ट नहीं करते हैं, एंड उससे स्किन में अगर उन्हें सूट नहीं करता है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड पैकेजिंग को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इस पैकेजिंग के पीछे क्या सच है, यही पूछने के लिए मैंने जो है साइकेट्रिस्ट और एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट ऋषि मलिक जी को कॉल किया था और उनसे पूछा था कि यार ऐसा क्या है, लोग क्यों इतना ज़्यादा जो है सिर्फ पैकेजिंग देख कर सामान खरीदते हैं। सो आइए बात कर लेते हैं ऋषि मलिक जी से।
2: हाय, आई एम डॉक्टर ऋषि मलिक, एंड एज अ सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट आई ऑफ्टन ऑब्जर्व हाउ कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑप्टिक्स एंड मार्केटिंग। ब्रांड्स अक्सर अट्रैक्टिव विजुअल्स, एस्पिरेशनल ब्रांडिंग और पॉलिश्ड एडवर्टाइजमेंट से एक फेक परसेप्शन ऑफ वैल्यू क्रिएट करते हैं और हम उसी झांसे में फंस जाते हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज ब्रांड्स लेवरेज दिस टू मास्क पुअर क्वालिटी और मिसलीडिंग इंग्रेडिएंट्स। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हमें अक्सर सुंदर चीजें और अच्छी चीजें जल्दी पसंद आती हैं, बट वी नीड टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स, एंड द बेस्ट थिंग टू डू दैट इज वी नीड टू क्रिएट अ शिफ्ट। वी मस्ट कल्टिवेट क्रिटिकल थिंकिंग, we need to scrutinize ingredients, seek independent reviews and ask ourselves, does this product actually meet my need? Yadi hum khud ko evidence aur skepticism mein anchor karenge, we will take back control from manipulative marketing techniques. So I really appreciate this endeavor to create consumer awareness and also to stop brands from misleading us.
0: बिल्कुल जी, इसीलिए तो ऋषि जी मैं सबसे पिछले दो दिनों से एक ही बात कह रही हूँ कि
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
0: रेडियो ऑलिव का ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? 3311063 पर जो है आप ऑडियो नोट भेजकर एक व्हाट्सएप पर छोटा सा मैसेज लिखकर जो है मुझे बता सकते हैं, ताकि और ऐसे जो मुद्दे हैं वो हम उठाएं और ज्यादा मोटिवेट करें लोगों को अच्छे काम करने के लिए। 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। एंड जैसे डॉक्टर ऋषि ने कहा कि आपको मिसलीडिंग जो पैकेजिंग है उससे जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पीछे कॉन्टेंट पलट के देखना है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है हर प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो, बट कई बार आपको कुछ चीजें, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी, पर्सनली एक इंसान की बॉडी जो है वो नहीं संभाल सकती है। मुझे सपोज शुगर नहीं खाना है, लेकिन सामने वाले को जो है सॉल्ट से प्रॉब्लम है। सो पर्सनली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसीलिए आपको एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। हो सकता है कि कंपनी इसको छुपा भी नहीं रही हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक बार प्रोडक्ट को फ्लिप करें, पलटें और देखें। फिलहाल इस कूल एडवाइस के बाद जो है कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर तो बनता है।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

गाने का नाम है यारों सब दुआ करो। तो यारों सिर्फ दुआ करो कि लोग जो है अब फ्लिप करने लगे, प्रोडक्ट्स को पलट के देखने लगे। फिलहाल रामशंकर की आवाज में ये ट्रैक एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ 106.3 रेडियो ऑलिव पर लाइफ मस्त है शो में पलट मेरी यार एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

0: लक्ष्मी अय्यर की आवाज में सुर मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आलिफ पर, और मैं हूँ आपकी कशिश, ले आई हूँ आपके लिए
1: पलट मेरे यार।
0: हाँ जी, पिछले 3 दिनों से आपको कह रही हूँ कि पलट मेरे यार लाइफ मस्त शो में, कि यार जो भी सामान आप खरीद रहे हो उसे खरीदने से पहले जरा पलट के देखिए और ये देखिए कि उसमें क्या कुछ कंटेंट जो है वो मिला हुआ है, क्या वो आपके काम का है, क्या वो आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा भी हानिकारक है या बस आपको सूट नहीं करता है। सो एक बार अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, ये सब देख कर चेक करके अगर आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। और अब मैंने आपसे ये पूछा था कि यार मुझे जरा बताओ कि आपको ये इनिशिएटिव जो रेडियो ऑलिव का है ये किस तरीके का लगा, एंड क्या आपको और ऐसे इनिशिएटिव्स चाहिए। सो बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया है, एंड अगर मैं बात करूं सो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, एंड मैं सुनाने वाली हूं आपको कि क्या कुछ मेरे पास मैसेजेस आए हैं। सो जरा ऐसे सुनिए, एंड अगर आपका भी कोई मैसेज है सो आप 3311063 पर मुझे भेज सकते हैं।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच यार, बहुत सारी चीजें हमेशा शॉपिंग करता हूं बट बहुत बार पलट कर देखता ही नहीं हूं, बट पलट कर देख इस इनिशिएटिव की वजह से मैं बहुत सारी चीजें अब सही मायने में पलट कर देखता हूं, बहुत जागरूकता के साथ खरीदता हूं, एंड कशिश ऑल द क्रेडिट गोज टू दिस एंड योर इनिशिएटिव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
3: आई थिंक ये सेगमेंट मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है, एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है, जबरदस्त है, तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर अहेड इंशाल्लाह, एंड थैंक यू कशिश एंड थैंक यू रेडियो ऑलिव।
4: आई जस्ट वांट टू से दैट आप लोग ये जो एक्टिविटी कर रहे हो इट्स सो गुड, बिकॉज हम लोग शॉपिंग में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम अगर हम बाय कर रहे हैं उसके पीछे पढ़ते ही नहीं है कि क्या क्या लिखा हुआ है, यू नो उसके पीछे का कॉन्टेंट क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि वेन एवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट सो वो पलट के देखे। सो ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब and thank you Kashish, मैं सुन रही हूँ आपका शो और you guys are rocking it।
0: तो बस देखिए सबके साथ आप भी कह सकते हैं
1: पलट मेरे यार।
0: यूसुफ खान साहब ने कल जो है वो मुझे ऑडियो नोट भेजा था जो मैंने आपको सुनाया, लेकिन आज उन्होंने मैसेज भी करा है, जो हमारे एक्सपर्ट थे डॉक्टर ऋषि मलिक जो एक साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने ये कहा था कि हम अक्सर फ्रंट पैकेजिंग देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड पीछे पलट के नहीं देखते हैं, सो हमें देखना चाहिए। सो उन्होंने अग्री किया है इस बात से, एंड अगर आप लोग भी मेरी इस बात से थोड़ा भी अग्री करते हैं तो 3311063 पर अपना ऑडियो नोट भेज सकते हैं एंड बहुत सारा प्यार जो है वो भेज सकते हैं। फिलहाल छू मंतर का नारा है आपकी रेडियो सेट्स पर, मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी से बेनी दयाल की आवाज में, एंजॉय करके आओ और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिदा।

0: यार इस गाने में भी वाइब है, लेकिन जो ओरिजिनल वाला लंबरगिनी था, मैं लंबरगिनी ही बोलूंगी, चाहे जितना भी आप मेरी प्रोनंसिएशन को जज कर लो, लंबरगिनी में जो वाइब है वो लंबरगिनी में नहीं है। मैं हूँ आपकी कजिन 106.3 रेडियो ऑलिव पर, एंड ये अमेजिंग वाला गाना सुनने के बाद, तीन दिन आपको सेम चीज बोलने के बाद वापस लेकर आ गई हूँ।
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
0: एंड काफी सारे लोगों ने काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं। एनी ने कहा है कि थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव, एंड बहुत ही अच्छा लगा जो आप लोगों ने लोगों को पलटने के लिए जो है मोटिवेट किया, तो थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा रिस्पांस देखकर। एंड अब यहाँ से मेरे जाने का वक्त आ गया है, मुलाकात होगी अब कल। सो अमेजिंग वाले बैक टू बैक गाने आप इंजॉय कीजिए, एंड कल मेरे आने का जो है इंतजार जरूर कीजिए। तब तक के लिए 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं, एंड जो भी कहना है वो कह सकते हैं, और अगर मुझे मिस कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, लेकिन जाते जाते एक बार और याद दिला दूं कि
1: पलट मेरे यार।
0: इसके बाद ये फ्रेश सॉन्ग एंजॉय कीजिए।
2: Radio on

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: वेलकम टू जंगल का ही गाना है, उच्चा लंबा फॉरएवर, श्रीना कैफ को याद करते हुए दिशा पटनी और अक्षय कुमार फीचरिंग। ये गाना एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए, सी यू इन द स्टार्टअप, बाय बाय, टेक केयर।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
3: अरमान मलिक
2: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो ओलिव नंबर वन।
5: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Olive Music Marathon. 1 ghanta. Non-stop back to back.

0: Sabah's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: Mornings and nights.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Oliver 6.3 FM. Tanisha, आपके साथ Oliver Recharge लेकर आ गई हूँ जी मैं अली सेठी की आवाज में. इतना सुंदर गाना है, absolutely love this one. और जब मैंने पहली बार सुना था ना, continuously repeat पे चला था. और अभी भी वैसे मैं उससे बोर तो नहीं हुई हूँ जी. बट गुड आफ्टरनून मेरी जान, कैसे है, क्या हाल चाल है. 9th of June है, ट्यूजडे का दिन. हाउ हैज द डे बीन सो फार, कैसा ट्रीट कर रहा है ये ट्यूजडे, आपको सब जानना चाहूंगी. फटाफट से आ जाओ 3311 1063 पर मैसेज करो और ढेर सारे अमेजिंग आने लाइन अप है आपके लिए. ढेर सारी बातें भी लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या, आपके हाल चाल, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, तो फटाफट से आइए, कॉल भी कर सकते हैं 4444106 पर और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: अपने दिमाग में बिठा के रखने की जरूरत है, बिकॉज देखो गुस्सा तो हम सबको आ जाता है ना, और उस गुस्से में हम क्या बोल जाते हैं, क्या कर जाते हैं, वो बाद में रियलाइज होता है कि अरे तो नहीं करना चाहिए था। सो गौर से सुने जरा, यू कैन नॉट सी योर रिफ्लेक्शन इन बॉइलिंग वाटर, है ना, नहीं देख सकते हो आप अपना रिफ्लेक्शन बॉइलिंग वाटर में, वो स्टिल होगा तभी देख पाओगे। सिमिलरली यू कैन नॉट सी द ट्रूथ इन अ स्टेट ऑफ एंगर, तो जब शांत हो जाओगे, जिस तरह से पानी जब ठंडा हो जाता है आप उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हो, उसी तरह से जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो क्लैरिटी भी आ जाएगी और समझ में भी आ जाएगा कि इस चीज़ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत है भी या नहीं। सेम हैपेंड विद मी रिसेंटली, इसीलिए यू नो आई केम टू दिस रियलाइजेशन कि भाई तनिषा थोड़ा शांत यार। नॉस्टैल्जिया का तड़का और साथ में अली भाई।
1: लगता है कोई दीवाना तो करता है हंसी बहाना तो
0: दिल भरा एंड देन दिस ब्यूटीफुल वन।
1: अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है।
0: और फिर जवी वैद से शान और उस्ताद सुल्तान खान साहब की आवाज में।
2: जो चलने लगे चलने लगे हैं ये रास्ते,
0: मीलो नहीं थोड़ी ही देर साथ चलेंगे पर मजा आने वाला है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज का, ठीक है। हम 5 बजे तक ढेर सारी बातें करने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया गाने सुनने वाले हैं, मैं बहुत सारी अमेजिंग चीजें लेकर आई हूँ आज आपको बताने के लिए, और फिर आपके मैसेजेस भी तो हैं, पढ़ती हूँ अभी जरा, भेजो 3311 1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान।
3: Awesome.
4: रेडियो ऑल ओवर पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: तनिषा
1: अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में दिल भरा फ्रॉम द मूवी धूम ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और जी रजिस्ट्रेशन जो हैं वो खुल चुके हैं वीसीयू आर्ट्स कतर समर आर्ट एंड डिजाइन प्रोग्राम्स के लिए। जी हाँ, सो इट विल रन फ्रॉम जुलाई 12th टू ऑगस्ट 6th वीसीयू आर्ट्स कैंपस में एजुकेशन सिटी में एंड इट इज ओपन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम एज 16 टू 18 एंड मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स और जो भी यू नो क्रिएटिव स्किल्स सीखना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे 3D मॉडलिंग एंड प्रिंटिंग, डिजिटल आर्ट, वर्चुअल रियलिटी, स्पेशल डिज़ाइन, विजुअल स्टोरी टेलिंग, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो भी इंटरेस्टेड हैं दे शुड यू नो जॉइन दिस एंड स्टूडेंट्स विल बी ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू VCU आर्ट्स कतर्स मेजर डिसिप्लिनस दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन, पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग, काइनेटिक इमेजिंग, ये सब चीज़ें भी आप सीखेंगे एंड यू नो क्रिएटिविटी, टेक्निकल स्किल्स, कॉन्फिडेंस और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है उसको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा थ्रू हैंड्स ऑन लर्निंग। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, चेकआउट कीजिए इफ आपके बच्चे या फिर जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो या आपके दोस्त और एनीबडी यू नो इज इंटरेस्टेड इन दिस डू लेट देम नो अबाउट इट क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। डू टेक एडवांटेज ऑफ दिस और फिलहाल एडवांटेज लीजिए इस बढ़िया गाने का। सुन रहे हैं रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ। रेडियो 106.3 जे ओ बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: Tanisha.
1: अरिजीत सिंह और शिल्परा की आवाज में रहोगी मेरी फ्रॉम द मूवी लव आजकल ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. तनिषा आपके साथ ऑलरेडी टॉक चल रहा है यहाँ पर. और भाई समर आए और मैंगो की बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है. राइट नाउ एवरी अदर डे आई फाइंड एनी एक्सक्यूज पॉसिबल टू हैव यू नो मैंगो इन एनी फॉर्म. लाइक आइदर आई विल गेट अ मिल्क शेक और यू नो मैंगो कट करके खा रहे हैं या फिर म्यूसली इफ आई हैव ब्रॉट फॉर ब्रेकफास्ट तो मैं उसमें कट मैंगोज लेकर आऊंगी या फिर अवल मिल्क वो मैंगो फ्लेवर का चाहिए. सो यू नो कोई ना कोई एक्सक्यूज. और इंडिया में भी सेम होता था, अगर मैंगो सीजन आ गया तो मुझे हर दिन घर पे मैंगो शेक चाहिए ही चाहिए होता था. एंड राइट नाउ थर्ड हांबा इंडियन मैंगो एग्जीबिशन होने वाला है सूक वाकिफ में. यस 18th से लेकर 27th जून तक ये चलने वाला है. 10 दिन का ये एग्जीबिशन है और ये थर्ड एडिशन है इस एग्जीबिशन का. रोज शाम 4 से लेकर 10 बजे तक आप वहां जा सकते हैं. इट इज फ्री फॉर एवरीबॉडी. 35 इंडियन कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी मैंगो की ऑब्वियसली, जैसे कि अल्फोंजो, केसर, लंगड़ा, दशहरी, नीलम, बदामी, मलगोवा और भी बहुत सारी. एंड लास्ट टाइम आई वेंट टू अ सुपरमार्केट टू चेक आउट मैंगोज, यू नो इतनी सारी वैरायटीज थी, यू नो डिफरेंट डिफरेंट, मुझे आधों के तो नाम भी नहीं पता थे. ऐसा लग रहा था किसी छोटे बच्चों को टॉय स्टोर में भेज दिया है. यस बहुत सारी नई वैरायटीज से भी आप इंट्रोड्यूस होंगे इस एडिशन में. सो जरूर जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा. अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट मैंगो जूसेस, आइसक्रीम, स्वीट्स, पिकल्स और ट्रेडिशनल इंडियन फूड जो कि मैंगो से बना है. बहुत बढ़िया होने वाला है ये. सो जरूर जाइएगा. मैंने तो अपनी लिस्ट में ऑलरेडी डाल दिया है कि भाई जाना ही है. ठीक है, और फिलहाल सुनते हैं एक बढ़िया गाना, बैरन ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ.

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह की आवाज में सूरज डूबा है यार। ओ भाई, यहाँ तो इतनी ज्यादा जोर से निकला हुआ है ना कि बाहर निकलने वाले बिल्कुल हालात नहीं है। और जब भी बाहर निकले ढेर सारा सनस्क्रीन लगाकर निकले और बहुत सारा पानी पीते रहे। स्टे हाइड्रेटेड मेरी जान, बिकॉज क्रेजी हॉटेस्ट डेज में आ चुके हैं हम साल के। सो ख्याल रखें अपना, ठीक है। तनिषा के साथ है। और एक म्यूजियम ओपन हुआ था लास्ट ईयर नवंबर 2025 में, एजुकेशन सिटी।

0: That is such an achievement. If you haven't been there yet, जरूर जाइए. और अगर आप art enthusiast हैं, तो जाना बनता ही है. बहुत ही सुंदर है. Check out कीजिएगा. और फिलहाल सुनते हैं जबरदस्त hit only on Radio Olive, Jio Bindaas.
1: अब सुनिए Olive का जबरदस्त hit.

0: जेम्स की आवाज में गैंगस्टर मूवी से भीगी भीगी ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ ऑल ओवर चार्ट चल रहा है यहां पर
1: टिकटॉक
0: टिकटॉक में इंस्टाग्राम की बात करते हैं। सो कुछ टाइम पहले कहा गया था कि रीअरेंजिंग पोस्ट वाला ऑप्शन जो है वो आने वाला है इंस्टाग्राम पे और वो आ चुका है। यस सो नाउ जब हम अपनी फीड देखते हैं तो लगता है कि यार कुछ भी कभी भी पोस्ट कर दिया है। कुछ लोगों की फीड इतनी सुंदर होती है कि वो देख के लगता है भाई सारा कुछ डिलीट कर देती हूँ और फिर उसके बाद यू नो दोबारा से अब अच्छे से पोस्ट करूंगी, पर ये तो बहुत कष्ट वाला काम है, नहीं हो पाएगा। सो नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि आप यू नो जोर से प्रेस करके एक पोस्ट पे उसको मूव करके फीड में कहीं पर भी रख सकते हैं। सो इस तरह से आप रीअरेंज कर सकते हैं अपनी फीड एंड इफ यू वांट टू डू इट चेकआउट कीजिए ये अपडेट अभी तक आपके इंस्टाग्राम पे आया है या नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आते एक साथ सबके पास नहीं आ जाता है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता था यार उसके फोन में आ गया मेरे फोन में क्यों नहीं आया, देन आई रियलाइज्ड कि टाइम लगता है बेटी, सबर करना पड़ता है। पर बढ़िया गाने के लिए सबर आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में मैं जा रहा हूँ फ्रॉम द मूवी नमस्ते लंदन, बहुत सुंदर गाना है, साथ में एंजॉय करते हैं ओनली ऑन रेडियो ऑल अप जियो बिंदास।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha आपके साथ आबाद बर्बाद सुना आपने अरिजीत सिंह की आवाज में लूडो मूवी से वैकी विजडम में आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो कि जाने अनजाने में हो रही है, हम पे भी अफेक्ट हो रहा है उसका. सो हम सोशल मीडिया जितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हम उस पर तरह तरह के ओपिनियंस देखते हैं लोगों की. यू नो, वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, कोई मूवी आई है, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई रील वायरल हुई है, सबके पास हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई ओपिनियन है. और उस सोशल मीडिया की लिबर्टी उठाते हुए हर कोई अपना ओपिनियन वहाँ चिपका देता है. एंड सम हाउ यू नो एक कोई ओपिनियन जिससे बहुत लोगों ने रिलेट कर लिया वायरल हो गया. यू नो इट कीप्स गेटिंग द रीशेयर्स इन ऑल, और हमने भी वो कहीं पढ़ लिया एंड जाने अनजाने में वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है. और कब वो हमारा भी ओपिनियन बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता है. एंड दैट इज़ हैपनिंग एक्चुअली राइट नाउ विद एवरीबडी. किसी ने अगर तारीफ कर दी एक मूवी की, यू नो रिव्यू आया कि भाई ये तो बहुत शानदार मूवी है, ये तो दिस एंड दैट, एंड देन इट गेट्स वायरल. रेस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने बस यू नो दे वेंट थ्रू दैट पोस्ट, उनका ओपिनियन बन गया कि ये मूवी तो बढ़िया है भले ही उन्होंने देखी है या नहीं देखी है. इसे कहते हैं मजॉरिटी इल्यूजन. देर इज कितनी सच्चाई इन दैट थिंग वी डोंट नो, बट हमने पढ़ा, हमने देखा कि बहुत लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं. एंड दैट इज सो नॉट राइट फॉर अस राइट नाउ. सो हमें इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि हम सोशल मीडिया को किस तरह से और कितना कंज्यूम कर रहे हैं. फिलहाल बढ़िया सा गाना भेज रही हूँ, चिल करें और सुनते रहिए रेडियो ऑल जियो बिंदास.

0: Kerala's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपके ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए. सर्टिफाइड के साथ बनिए.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Oliver 106.3 FM. A beautiful track. Neha Basin ki awaaz mein. Gunde movie se assalam alaikum yara. Aur bhai Oliver recharge chal raha hai. Aapko pata hai kis cheez ka waqt hai? Lame jams ka aaj ka mera sawal absolutely crazy it is. Matlab mind blowing. Reactions se bata rahi hoon jo mujhe yahan apne colleagues se mile hain. So, aaj ka sawal hai ki ek bodybuilder ke phone mein कितनी एप्स होंगी. जी, एक बॉडी बिल्डर के फोन में कितनी एप्स होंगी ये आपने मुझे बताना है. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. एक बॉडी बिल्डर के फोन में कितनी एप्स होंगी. बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है इसका आंसर. ठीक है, सोचो जरा और बताओ फटाफट से. और फिलहाल सुनते हैं चांद देख लेना फ्रॉम द मूवी मातृभूमि. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले 3 दिनों से रेडियो ऑलिव का इनिशिएटिव चल रहा था जिसमें हमने लोगों को इनकरेज किया कि कोई भी चीज खरीदने से पहले उसे पलटना जरूरी है।
2: We definitely need to flip. Why? The quantity of nutrients inside. So let us start by reading the nutrition fact.
3: Of course, everybody has to look at the contents, which is written very clearly at the back.
1: और इसके 3rd एपिसोड में हमने बात की साइकियाट्रिस्ट से कि आखिर हम पैकेजिंग देख के डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं।
4: I am Dr. Rishi Malik, senior consultant psychiatrist. Brands अक्सर attractive visuals, aspirational branding और polished advertisement से एक fake perception of value create करते हैं। ये एक basic human nature है, but we need to protect ourselves. And the best thing to do that is we need to create a shift. We must cultivate critical thinking. So, I really appreciate this endeavor to create consumer awareness and also to stop brands from misleading us.
1: I hope ये सुनने के बाद आप भी inspire हुए होंगे पलट के देखने के लिए।
5: इस initiative की वजह से मैं बहुत सारी चीजें अब सही मायने में पलट कर देखता हूँ।
6: आई थिंक ये सेगमेंट मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है। एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है।
7: वेरी इम्पोर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स वो पलट के देखे। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट।
1: सो बस अब याद रखिए कि जब भी कोई सामान खरीदें तो उसे पलट के जरूर देखें, उसके पीछे की कॉन्टेंट जो है वो जरूर से पढ़ें, और बाकी सब लोगों को भी कहें
8: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
9: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
10: Hey, this is Liana De Cruz.
11: This is me, Ritik Roshan.
12: Hi, I'm Alia Bhatt.
13: Hi, main hu Vivekanand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: Arijit Singh aur Antra Mitra ki awaaz mein, The Sky Sphinx, a beautiful track. And if you haven't watched this movie, dekh lo yaar, bahut pyari hai, bahut rona aayega. Tissue box lekar rakhna saath mein. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par. Lame Jams. So Lame Jams ka aaj ka mera sawal tha ki ek body builder ke paas kitni apps hongi uske phone mein. Aur yahan pe mujhe jo maine expect kiya tha ki jawab milega, wahi aaya hai. 6 apps. Nahi, I'm not asking about apps. ABS. No. APPS. Apps in the phone. उसके बारे में भी पूछ रही हूँ. सो 6 इज ऑब्वियसली नॉट द करेक्ट आंसर. लेफ्ट एंड राइट दो भी बहुत गलत आंसर है. थोड़ा सोचो यार, मतलब बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, यू नो, थोड़ा आर्म्स एंड ऑल. अब इससे ज़्यादा हिंट दी तो मैं जवाब ही दे देती हूँ ना, कुछ बचा ही नहीं है फिर. एक बार और सोचो, ठीक है. एक बॉडी बिल्डर के पास कितनी एप्स होंगी उसके फोन में? एप्स, एप्लीकेशंस, यस. 3311106 पर फटाफट से मुझे मैसेज करो, बताओ, या फिर कॉल कर दो 4444106 पर. फिलहाल इंजॉय करते हैं जोश ब्रार की आवाज में बड़ा ही प्यारा गाना, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर. स्टे ट्यून ऑन जियो बिंदास मेरी जान.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. So, Lame Jams का आज का मेरा सवाल थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया यार, मुझे लग रहा है जवाब ही नहीं आ पाए. मतलब I've got only two correct answers. And I'm shocked कि हमारे lameness का level match नहीं कर रहा है. अभी मुझे बुरा लग रहा है सोच के, but कोई बात नहीं, हमने ट्राई तो किया मेरी जान. दैट इज अ लॉट एंड मोर देन इनफ, थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो या द क्वेश्चन टुडे वाज कि एक बॉडी बिल्डर के फोन में कितनी एप्स होंगी. सिक्स पैक एप्स नहीं, नो, इट हैज टू बी बाइसेप्स. यस, 22, बिकॉज बाइसेप्स आई टोल्ड यू नो इट हैज समथिंग टू डू विद द आर्म्स. एंड मोहम्मद यूसुफ खान साहब एंड इरफान साहब को आ चुका है इसका करेक्ट आंसर. तो बधाइयां जी एंड थैंक यू सो मच मुझे प्राउड फील कराने के लिए. बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट. यहाँ पे मैंने जब अपने कॉलिग से पूछा ना, उन्हें भी नहीं आ रहा था और ऐसे गंदी गंदी शक्लें बना के उन्होंने मुझे देखा है और कहा चलिए जाए यहाँ से, शक्ल मत दिखाना अपनी. फिर मैं आपके पास आ गई. बट आप बहुत प्यारे हो. इसी बात पे एक प्यारा सा गाना टू स्टेट से, एंड आई लव दिस मूवी. आई मीन मैंने इसे 3 बार थिएटर में देखा है. यस, आई डोंट नो व्हाई, बुक मैंने पढ़ी भी नहीं है बाय द वे, बट मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी फॉर सम रीजन. आई स्टिल लाइक इट. जब भी टीवी पे आती है मैं देखने बैठ जाती हूँ. एंड देन माय भाभी एंड माय मम्मा इज लाइक क्या है तनीषा, एक ही पिक्चर देखती रहती है यार. बट अब पसंद है तो पसंद है. जी हाँ, तो आइए इंजॉय करते हैं. लो जाए उल्फत, ओनली ऑन रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास मेरी जान.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: लगा और हो जा रिचार्ज।
7: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
8: ऑलिव रिचार्ज।
9: This hour is brought to you by
10: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
11: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार From the movie Bhulbulaiya to only on Radio Ala 106.3 FM Tanisha आपके साथ All Over George चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे जाने का मेरी जान मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे Wednesday हो जाएगा ऐसे वीकेंड की जो लहर खुशी की दौड़ चलेगी वो सब आप ऑनर भी सुन पाओगे क्योंकि यार ऐसे और ज्यादा लाइट हो जाता है वेंसडे को मूड ना कि वीकेंड आ रहा है ये सोने को मिलेगा मजे करेंगे सो यस कल दोपहर मिलते हैं लेकिन आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें मेरी जान बहुत ज्यादा वेदर जो है हॉट हो रखा है तो जरा स्टे हाइड्रेटेड पानी वानी पीते रहिए बाहर जा रहे हैं तो साथ में लेके चलिए इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह रखिए अपने साथ एंड यू नो ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो वाटरमेलन एंड ऑल दैट मैंगो की एग्जीबिशन होने वाली है तो वहां मैं जाने वाली खो गई मैं देखा बात करते करते मुझे याद आया कि फ्रूट से मैंगो होता है मैं मैंगो पे चली गई कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑल्सो बहुत सारा सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए जब भी बाहर जा रहे हैं भर भर के लगाइए सनस्क्रीन और खाना बहुत लाइट खाइए ज़्यादा ऑयली ना हो तो बेहतर है आप इंपॉर्टेंट हो यार आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा बताओ मुझे सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ मेरी जान और सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM जियो बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Ye Gaana.

इकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बे

में नहीं, फटाफट डांस करो यार। लेकिन ये जो चार घंटे अपने होने वाले, ये स्लो मोशन में चलने चाहिए, टाइम जल्दी जल्दी नहीं बीतना चाहिए। मैं क्या जी सोने हो गया दिखी हाल चाल सत सिमरन कौरे आपके साथ। जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। जैसे ही ये शाम का टाइम होता है, जबरदस्त इवनिंग शुरू होता है, मेरी फील पता कैसी होती है? लेके चलते हैं यार, ताकि कुल मिला के सारे लोग जो है वो एंजॉय कर सके। चार घंटे अपने ही होने वाले हैं जबरदस्त इवनिंग्स में। और बताइए सिमरन कौर को कि आप लोगों का आज का दिन कैसा गया? यार मतलब ऐसे मैं सोच रही थी कि यार आज ट्यूसडे है, फिर वेंसडे को भूल जाते, सीधा थर्सडे पे आ जाते। देखो लाइफ में ना एक दूसरे को मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको मोटिवेट करते करते खुद को भी वीकेंड के लिए मोटिवेट करने लग जाती हूँ। आप बोले कि सिमरन यार अभी ट्यूसडे है यार, तो क्या हो गया अभी यार, ट्यूसडे क्या यार, एक ही दिन का बीच में बचा हुआ है मामला आपका। और बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? बहुत सारी बातें डेफिनेटली मुझे करनी है और बहुत सारे गाने भी आप लोगों के लिए चलाने हैं। तो फिर शुरुआत कर लें कि आप मुझे सुन रहे हैं, कौन कौन सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। 3311063 पर व्हाट्सएप कर दो। और हाँ, मुस्कुराना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हैं।

0: अलग लेवल की ये हैप्पीनेस है ना कि आज मैं आगे, जमाना है पीछे, नहीं आज मैं ऊपर आसमान नीचे। यार ये सब कुछ था गाने में, मेरे लिरिक्स बहुत खराब है, फीलिंग समझा करो यार। आपकी हेल्थ जो है ना वो अच्छी रहनी चाहिए, तभी लाइफ में चाहे 100 चीजें अच्छी हो रही हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सो रिसेंटली मैं पढ़ रही थी अपने कतर के बारे में, ब्रेन स्टडी कंडक्टेड इन कतर, जिसमें एक रिसर्च हुई है कि ये जो स्मोकिंग सबसे पहले तो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर आप करते हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, है ना। और उसके साथ साथ स्मोकिंग के साथ साथ जो लॉन्ग वर्किंग आ रहा है ना, वो उन लोगों में जो कि ये दोनों चीजें कर रहे हैं, वो स्ट्रोक का खतरा जो है वो जो नॉर्मल लोग हैं ना उनसे भी 2 साल पहले उनको हो सकता है। सो अगर आप ये दोनों काम कर रहे हैं तो गलत है। देखिए स्मोकिंग आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, हेल्प लगती है, आप छोड़ सकते हैं। एंड अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स है ना, उसमें से एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि अगर नहीं चल रहा है काम, है ना, कि आपको काम करना ही है, सबका अपना अपना जो काम करने का स्टाइल, कंपनी का स्टाइल, हर किसी का अलग होता है, बट जब आप चेयर पे बैठे हो ना, मेक श्योर कि आप उठो, मतलब आधे घंटे में, एक घंटे में थोड़ा सा उठ जाओ, थोड़ा सा एक आध मिनट का वॉक कर लो, और आंखों को भी थोड़ा सा आप रेस्ट दो, क्योंकि हम सिस्टम पे, स्क्रीन पे जो है वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो मेक श्योर कि ये चीज़ जो आपके अपने हाथ में है वो चीज़ आप करें, स्मोकिंग छोड़ना भी आपके हाथ में है, और अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं तो उसमें से अपने आप को एक दो मिनट बीच बीच में उठाते रहना, वो भी आपके हाथ में, फॉर योर गुड हेल्थ। भाई वो हेल्थ सही रहेगी तभी काम करते रहोगे ना आप। So, थोड़ा सा ध्यान रखो, सबको सब कुछ पता है, लेकिन एक छोटा सा रिमाइंडर है, क्योंकि लव यू 100 किलो है यार आप लोगों से। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

बेबी. सोनम कपूर का आज हैप्पी वाला बर्थडे भी है। सोनम कपूर का आज हैप्पी वाला बर्थडे तो है ही, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब वो इतनी ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन कुछ फिल्में उन्होंने की है जिसमें वो मुझे काफी ज्यादा उनका अच्छा जो था वो रोल लगा। दो, शी इज नॉट माई फेवरेट, बट ऐसा है कि मैं उनको ऐसा नहीं है कि पसंद भी नहीं करती। बाग मिल्खा बाग में मुझे याद है निर्जा फिल्म में उनका जो कैरेक्टर था वो भी मुझे याद है। कुछ है फिल्म में जिन्होंने जिस फिल्म में उन्होंने अच्छा काम किया। सोनम कपूर के बारे में पढ़ रही थी तो जब पढ़ाई कर रही थी सो सिंगापुर में थी शायद, सो वो अपनी पॉकेट मनी के लिए उन्होंने एज ए वेट्रेस जो है वो भी काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्टार किड है तो उनको पैसे घर से ही आते थे, नहीं, अपनी पॉकेट मनी के लिए उन्होंने वो काम किया। लेकिन अपनी पहली फिल्म के लिए हम सबको पता है कि उन्होंने बहुत अपने आप को फिट किया है, क्योंकि कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से उनको जो उनका वेट जो था वो 80 kg था। इंडस्ट्री में अगर बात करें, कोई स्टार किड लॉन्च हो रहा है एकदम फिट और बढ़िया रहता है, 30 kg उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए जो था सांवरिया के लिए कम किया था। सो या मेहनत जो है वो हर चीज में आपको लगती है, बट यस आज सोनम कपूर जो है, मतलब अगर नाम ले तो लोगों को समझ लगता है कि हाँ भाई है वो बंदी। तेरा रंग

कपूर को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए मेरी उनकी फेवरेट फिल्म में से ये गाना चला रही हूँ, जिसमें मुझे सोनम कपूर के साथ साथ ऑफ कोर्स फरहान अख्तर भी बड़े अच्छे लगे थे यार, क्या एक्टिंग की थी यार। जावेद बशीर मेरे सुपर फेवरेट बंदे हैं यार, मतलब कमाल के आर्टिस्ट हैं। लाइव देखना है मैंने इनको, इनका कॉन्सर्ट अटेंड करना है मुझे।

बेल बॉटम से आप ये गाना सुन रहे हैं। गर्मी जो है वो आ चुकी है, बट मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ यार। किसका मन करता है देखो गर्मी के लिए मैं गाना अगर डेडिकेट करना चाहूँ गर्मी को नहीं कर...

ठंडा सा मौसम बना रहा है यार, ज्यादा बढ़िया लगता है, लेकिन अभी के लिए ये तो सिर्फ ख्वाब है। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 39 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 42 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 34 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ह्यूमिडिटी 10% है। सो ये है मौसम के हाल। आए हाय, थोड़ी बारिश पड़वा देते हैं इस गाने से, क्या बोलते हो?

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
3: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

हाय हाय, प्यार में इंसान करता है यार ऐसी चीजें। फिर वो चीजें करता है जो सामने वाले को पसंद होती है, जो कि हम ये चीजें बहुत ज्यादा गलत करते हैं। कभी कभी जब इंसान प्यार में होता है, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो वो उसी के तरीके से, अरे तुमको लाल रंग पसंद है, मुझे भी लाल रंग पसंद है, अरे तुमको काला रंग पसंद है, मुझे भी काला रंग पसंद है, अरे तुम ये नहीं खाते, अरे मैं भी ये नहीं खाता। तो ऐसी चीजें आपको लाइफ में करनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो जैसे आप हो ना, वैसी आप दिखाइए। और किसी के लिए अपने आप को अगर आप चेंज करेंगे ना, तो जब प्यार थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर भसड़े मत जाती, अरे तुम तो ये नहीं थी, तुम तो वो नहीं थी, तो जैसे हो वैसे ही दिखो।

0: यार ये गाना हमेशा मुझे यही सुनता है, मेरा बॉस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। अगर आपने मुझे गुड इवनिंग का मैसेज भेज दिया, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। लेकिन अगर आपने मुझे अभी तक नहीं भेजा तो बेटा कहां में दिक्कत आ रही है आप मुझे वो बताओ, ठीक है। सो व्हाट द वायरल में आज क्या है आपके लिए, मैं आपको बता देती हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल, क्या बात है आरजे सिमरन के साथ।
0: जो आईफोन यूजर हैं, जब भी iOS का नया अपडेट आता है तो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन अभी ये अपडेट आई भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी बात हो रहा है। iOS 27 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका लॉन्च जो है वो 14 सितंबर को होने वाला है। लेकिन इसका बेटा, डेवलपर बेटा जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो फॉर पब्लिक ये 14th ऑफ जुलाई के अराउंड आई गेस होने वाला है, और 14 जुलाई के बीच में होने वाला। डेट मेरे को एग्जैक्टली जो है वो याद नहीं है, बट यस पब्लिक बेटा जो है उसकी डेट है मिड जुलाई, मतलब हाँ या 15 तक ही होने वाला है। सो इसमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं। फॉर मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूँगी, जो डेवलपर बेटा या फिर पब्लिक बेटा के लिए सोच रहे हैं कि वो पहले ही डाउनलोड कर लेंगे और उनको पता लग जाएगा, तो मत करिएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैटरी का इशू हो जाता है, बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, ऐप क्रैश होते हैं, वो सारे होते हैं। तो जब फाइनल पब्लिक रिलीज आएगा ना 14 सितंबर को, तब ही इस अपडेट को जो है वो आप डाउनलोड करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे जो है वो आपको मिल रहे हैं, जिसके बारे में फोटो से रिलेटेड है, आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बहुत सारे चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या क्या होने वाला है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो। सुंदर रेडियो ऑलिव गुरु के दरो जियो बिंदास।

0: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tod with Talabak Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
6: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
7: Radio Olive, our number one.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
9: आरजे सिमरन के साथ।
10: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सही गाने यार। सिमरन कौर आपके साथ यार। मैं ना गर्मी आ गई है तो हर जगह आपको पता है कि आपको मैंगो और वाटरमेलन जो है और खरबूजा जो है ये सारे फ्रूट जो है मिलेंगे कि खाओ यार, गर्मियों में बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ खाना, जिसमें से आज मैं सोच रही थी जामुन के बारे में। भाई बचपन में जामुन की कदर नहीं की है यार मैंने, लेकिन अब मेरे को याद आता है कि मम्मी वो कांच वाले बड़े गिलास में डाल के उसके अंदर नमक डाल के ऐसे देती होती थी। ओए होए भाई बड़ी, और जामुन खाने के बाद जीभ जो है वो आपकी टंग जो है वो एकदम जामुन कलर की हो जाती है। सो हम लोग ऐसे ऐसे अपनी जो ना जीभ दिखाते होते, देख देख देख तेरी कलर हुआ कि नहीं तेरी टंग पे। सो मेरे को ना बहुत ज्यादा मिस करती हूँ यार। कोई ऐसा फ्रूट है जो कि इस समर में जब भी या फिर गर्मियां आती हैं तो आप बहुत खाना मिस करते हो यार, जो कि आप खाते होते थे? मैंने बेर बड़े खाए हैं भाई। बेर पता नहीं सर्दियों में होते हैं, गर्मियों में वो नहीं मुझे याद है ना, पर मैंने बेर बहुत खाए हैं। कच्चे आम जो है वो भी बहुत ज्यादा खाए हैं, अमरूद जो है वो भी बड़े खाए हैं मैंने। सो बताओ कौन सा ऐसा फ्रूट है जो कि आप मिस करते हो यार खाना?
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है?
0: लिख के ना भेज के अगर आप मुझे वॉइस नोट के थ्रू भेजेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा यार। 3311063 पर कौन सा फ्रूट है जिसको आप बहुत मिस करते हो यार खाना?

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालुकास जोयालुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
9: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabak Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
3: हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले तीन दिनों से रेडियो ऑलिव का इनिशिएटिव चल रहा था जिसमें हमने लोगों को इनकरेज किया कि कोई भी चीज खरीदने से पहले उसे पलटना जरूरी है.
4: We definitely need to flip. Why? The quantity of nutrients inside. So let us start by reading the nutrition fact.
5: Of course, everybody has to look at the contents, which is written very clearly at the back.
3: और इसके थर्ड एपिसोड में हमने बात की साइकियाट्रिस्ट से कि आखिर हम पैकेजिंग देख के डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं.
6: I am Dr. Rishi Malik, senior consultant psychiatrist. Brands अक्सर attractive visuals, aspirational branding और polished advertisement से एक fake perception of value create करते हैं. ये एक basic human nature है, but we need to protect ourselves. And the best thing to do that is we need to create a shift. We must cultivate critical thinking. So, I really appreciate this endeavor to create consumer awareness and also to stop brands from misleading us.
3: I hope ये सुनने के बाद आप भी इंस्पायर हुए होंगे पलट के देखने के लिए.
7: इस इनिशिएटिव की वजह से मैं बहुत सारी चीजें अब सही मायने में पलट कर देखता हूँ.
8: I think ये सेगमेंट मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है. एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है.
9: It's very important कि हम पलट के देखें एक्चुअली एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि whenever they are buying any product, so वो पलट के देखे. It's a great initiative, Radio Olive. You guys are doing a great job and thank you, Kashish. You guys are rocking.
3: So, बस अब याद रखिए कि जब भी कोई सामान खरीदें तो उसे पलट के जरूर देखें. उसके पीछे की कंटेंट जो है वो जरूर से पढ़े और बाकी सब लोगों को भी कहें
10: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार.
11: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
12: सिमरन के साथ
13: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
14: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
15: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ओए होए, व्हाट अ ट्रैक यार। ज्यादातर कतर में लोग जो है वो काम करने वाले, घर से दूर रहते हैं, किसी किसी की फैमिली किसी के साथ रहती है, लेकिन जो लोग, हम उनकी बात करते हैं जो लोग अकेले रहते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप मैं जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई बढ़िया बेस्ट सीरीज या कोई मूवी ढूंढते हैं कि भाई खाते खाते इसको देखेंगे, क्योंकि मेरी भी आदत है, बहुत सारे लोगों की ये आदत है। अब क्या होता है कि जब आप टीवी देख रहे हैं, है ना, कोई सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसे टाइम पे आपका ध्यान जो है वो एकदम सीरीज पे मूवी पे रहता है और आप एक्स्ट्रा इंजॉय करते हो क्योंकि आप खा भी रहे हो और उसके साथ साथ अपना फेवरेट जो भी टीवी सीरीज है वो देख भी रहे हो। अब ऐसे टाइम पे दिक्कत पता क्या होती है, एक रिसर्च ये बोलती है कि जब भी आप टीवी के सामने खाना खा रहे, अपनी फेवरेट सीरीज देखते हो, मूवी देखते हो, आप 40% जो है वो खाना ज़्यादा खा लेते हो, आपको रियलाइज भी नहीं होता है। सो मुझे पता है ये चीज़ होती है, बट हमेशा मैं एक चीज़ करती हूँ, अब जैसे मैं अकेली रहती हूँ, ओके, सो ऐसे टाइम पे मैं अपने रूम में उतना ही खाना लेके जाती हूँ जितना मेरे को खाना है, तो मेरे पोर्शन जो है ना वो सब मतलब एकदम कंट्रोल्ड रहते हैं। और मैं क्या है कि जो जिस विला में मैं रहती हूँ, मेरा जो रूम है वो एकदम टॉप फ्लोर पे है, जो मेरा किचन है वो नीचे है। सो अगर मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं लेके जाऊंगी, नीचे नहीं जाऊंगी खाना लेने के लिए किचन में, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ऑर्डर करती हूँ बाहर से, तो मेरा जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं कि मैं खाना जो है वो ज़्यादा खाऊं, क्योंकि जब आप खुद कुक करते हो तो आपको कभी कभी जो है ऐसा हो जाता है। और मेरे कुकिंग में भी सीन मैंने ऐसा कर लिया है कि मैं उतना ही कुक करती हूँ जितना मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कुक करोगे तो एक्स्ट्रा खाओगे। सो अगर आपकी ये आदत है कि आप नोटिस करिएगा नेक्स्ट टाइम, क्या आप भी खाते खाते एक्स्ट्रा खा लेते हो, क्योंकि मजा आ रहा है यार, अरे इससे आगे क्या होगा, अरे ये फेवरेट सीरीज है, आ तो सीजन पूरा करके रहूंगा, ऐसे टाइम पे पेट में कितने सीजन आपके चल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। जियो विंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखे हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव एंड विन.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

एक और ब्यूटीफुल लड़की का बर्थडे भी आज। सोनम कपूर का बर्थडे तो है ही, उसके साथ साथ अमीषा पटेल का बर्थडे जो है वो भी है। यार अमीषा पटेल का नाम लेते ही मेरे दिमाग में उनकी बस वही पहली फिल्म जो है कहो ना प्यार है दिमाग में आने लग जाती है। लेकिन अगर अमीषा पटेल की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, उनको लग्जरी डिजाइनर हैंडबैग्स खरीदने का बहुत ज्यादा शौक है और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला डिजाइनर बैग जो था वो खरीदा था, राइट। सो उनके पास 400 के करीब डिजाइनर बैग्स है, अर्मेस बर्किन, एंड मतलब जो बैग्स हैं वो इतने ज़्यादा महंगे। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में मजाक भी किया था कि भाई मेरे बैग्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं मुंबई में एक पेंट हाउस जो है मैं उनको देखे जो है वो खरीद सकती हूँ। सो या ये उनका अलग लेवल का ऑब्सेशन है। हम सब में होता है यार, एक ऐसी चीज़ होती है जिसका आप जो है वो ऐसे इतने ऑब्सेस्ड होते हो कि वो चीज़ आप खरीदते ही खरीदते हो।

मैं कहूँ ना प्यार है फिल्म के बारे में बात कर रही थी, तो कहूँ ना प्यार है फिल्म के बारे में खास बात यह है कि अमीषा पटेल की मॉम जो थी आशा पटेल, उन्होंने इस फिल्म में रोल किया था, बट वो उनकी मम्मी नहीं बनी थी, वो ऋतिक रोशन की मम्मी बनी थी मिसेस चोपड़ा के नाम से। ये बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता है, सो नहीं पता तो मैंने बता दी ना यार। अब इस फिल्म के बारे में बात हो ही रही है तो फिर बर्थडे कलर की गर्ल के लिए गाना भी बजा देते हैं। गरल गरल हो गया था यार।

0: प्यार है यार, लव यू 100 किलो है आप लोगों के साथ। और अभी ये जो आज मैं रियलिटी चेक में बताने वाली हूँ ना, वो चीज आप वाकई में सोचने वाले हो।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: मैंने कहीं पे पढ़ा और मेरे को ना बड़ा टच की वो बात। कहते हैं कि जब हम छोटे थे ना, तो जब कोई खिलौने बेच रहा होता था तो हम क्या करते थे, हम खिलौनों को देखते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं ना, तो हम खिलौनों को नहीं देखते, जो खिलौने बेच रहा होता है ना हम उसको देखते हैं। क्योंकि हम उसको देखते हैं और सोचते हैं कि यार बंदा कितनी मेहनत कर रहा है लाइफ में, इसको ये जो सिचुएशन अभी चल रही है जहाँ पर ये इंसान को खिलौने बेचने पड़ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में और भी सेटल हो सकता था। कितनी मेहनत कर रहा है वो अपनी फैमिली के लिए, या कितनी अपने बच्चों के लिए वो मेहनत जो है वो कर रहा है कि वो बीच सड़क में इधर उधर खिलौने बेच रहा है यार। तो ये एडल्टिंग हो जाती है अपनी जब हम ऐसी सोच जो है वो रखने लग जाते हैं। हर एक बंदे की स्ट्रगल को जो है जो हम फील करने लग जाते हैं, वो हम तब करते हैं जब हम खुद भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या कर चुके हैं। सो बी हम्बल यार, हर किसी की अपनी लाइफ है। बी काइंड सारे लोगों के लिए, क्योंकि हर किसी की भसड़े अलग है यार, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। सो यार जितना हो सके उतना लोगों को खुश रखने की कोशिश करो यार। जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

जितने भी ये गोरे गोरे से छोरे हैं, अपने अपनी बंदियों को दिलवाओ यार, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का बढ़िया ऑफर चल रहा है और बढ़िया ज्वेलरी दिलवाओ एंड शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। जी हां, अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज करिए या नए डिजाइन जो है वो आप ले सकते हैं। डिजाइन बहुत ज्यादा बढ़िया, बट अगर आप अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज करवा ही रहे हो तो बस मेकिंग चार्जेस दे के आप एक्सचेंज करवा सकते हो, वो दिक्कत नहीं है कि आपने कहीं से भी खरीदा है, मतलब कहीं से भी खरीदा हो एक्सचेंज करवा सकते हो। एंड उसके साथ साथ अब तो आप इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया की वजह से अप टू 15% गोल्ड प्राइजेस पर अपने कतर में सेव भी कर सकते हो। एंड आप लोगों के जो क्यूट मैसेजेस आते हैं, तनवीर जी का मुझे मैसेज आया कि ऐसे हिट हिट गाने सुनाने के लिए लव यू 100 किलो सिमरन जी, थैंक यू सो मच यार, और क्या चाहिए। आप लोगों का प्यार जब इस तरह से मिलता रहता है ना, बस कुछ नहीं।

थैंक यू सो मच डेजी जी, हमको कनाडा से ये सुनती हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू. हर रोज इनका रेडियो जो है वो ऑन रहता है, किसी भी दिन जो है ये मिस नहीं करती. मैं रिप्लाई करना कभी कभी मेरे से मिस हो जाता है, लेकिन इनका मैसेज कभी मिस नहीं होता. बट मुझको इंतजार रहता है यार. थैंक यू सो मच डेजी जी, वापस लौट के नेम गेम खेलने के लिए तैयार हो जाइए.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

अरिजीत सिंह की आवाज, ओ माय गॉड। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे बोलूं, तो अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे मेरी व्हाट्सएप स्क्रीन पे दिखेंगे, सो वो नाम मैं बोलने वाली हूँ, बट आपको मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख के भेजना होगा। तो मैं उसके लिए अब मेरा व्हाट्सएप का नंबर बता रही हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3। जी हाँ, 3311106 3। इस पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो। चलो अब मैं नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। शाहिद, आरिफ, रजा, जुल्फिकार, आसमा, डेजी, तनवीर, संदीप, सुभाशिष, आसिफ अगेन, सलीम, वेरोनिका, मलिक्सा, मोहम्मद वसीफ, खुर्शीद भाई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी थैंक यू मत लिखिएगा, सिर्फ नाम आने दीजिएगा। शाहिद जी थैंक यू सो मच, इमरान जी थैंक यू सो मच, रेहान जी थैंक यू सो मच, पाली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, अवेस जी थैंक यू सो मच, सुमोन जी थैंक यू सो मच, सुमोन उद्दीन जी, शाहिद ऑलरेडी मैं आपका नाम बोल चुकी, और रिक्वेस्ट ये भी है कि जिनका नाम मैं बोल दूं वो वापस से नाम ना लिखें ताकि बाकी लोगों का नंबर जो है वो आ सके। इमरान फारूकी जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी थैंक यू सो मच, सूरज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नबील कुरैशी जी, हमद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। 3311106 3 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। सनाया जी थैंक यू सो मच, अपने जो इमेजिनरी नेम है वो मत लिखिएगा, है ना जी, थैंक यू सो मच। शाह साहब थैंक यू सो मच, नीलेश जी थैंक यू सो मच, रॉनी जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिमजान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हारून जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, गुरशरण जी थैंक यू सो मच, सिंह साहब थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया अब आप थैंक यू लिख सकते हो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेज दीजिएगा साथ में। अगले घंटे खेलते हैं एक चुटकी सॉन्ग, ओके तैयार रहिएगा।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
2: हाय, दिस इज विपाशा बासु.
3: हाय, आई एम राजकुमार राव.
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ.
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

आई हेट लव स्टोरी से, ये बहारा का चिल वर्जन था यार, बड़ा मजा आया। मैं यही सुन रही हूँ कि दद की हालचाल सत श्री अकाल। सिमरन कौर थोड़े नाल एक नंबर गाने चल रहे हैं, 8:18 हो चुके हैं।

0: सावले जी रंग दी इत्थे बैठी है ना यार शो कर दी पई गाने तो चल रहे हैं लेकिन अब आपकी जबान चलवानी है मैंने
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया बहुत
0: एक चुटकी सॉन्ग मैं आपको सुनाने वाली हूँ क्योंकि ज्यादा गाना सुनाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा लेकिन एक चुटकी सॉन्ग में जितने भी बॉलीवुड लवर्स हैं वो तो पहचान ही लेंगे देखते हैं कितने लोग पहचानते हैं कि ये गाना कौन सा है वैसे तो बहुत इजी है यार बताओ ये कौन सा गाना है अगर आपको पता लग गया एक बार वापस से सुना रही हूँ अगर आपको पता लगे गाना कौन सा है थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और मुझे वॉइस नोट करके भेजिएगा प्लीज लिख के मत भेजिएगा मजा नहीं आता हे सिमरन अपना नाम बताइए और गाना गा के भेज दीजिए कोई चक्कर नहीं है बोल के बताना है तो भी बता सकते हैं गाना बताइए बस 3311063 पर व्हाट्सएप कर दीजिए
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर

0: क्या वाइब सेट हो रखी है यार रात में. आई नो यू वेलकम. ऐसे ऐसे गाने मिल जाए रात रात में. मैं ये जी सोने के दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: एक चुटकी सॉन्ग में ये चुटकी भर गाना आपको सुनाया था और आपने मुझे बताना था ये गाना कौन सा है.
3: हाय सिमरन, दिस इज नैना.
0: हाय नैना.
3: और गाना है टिप टिप बरसा पानी.
0: थैंक यू सो मच लव.
4: नमस्ते. टिप टिप बरसा पानी.
0: ओके एकदम पत्थर उठा के मारा रहता ना वैसे जवाब दिया यार आपने.
5: गुड इवनिंग.
0: वेरी गुड इवनिंग.
5: ये सॉन्ग है टिप टिप बरसा पानी.
0: ओके
5: ओके थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच.
6: हाय सिमरन, दिस इज डेजी फ्रॉम कनाडा.
0: ये
6: सॉन्ग इज टिप टिप बरसा पानी. पानी में आग लग जाए.
0: सो क्यूट.
6: जियो बिंदास.
0: आपके लिरिक्स मेरी तरह इधर उधर हो जाते हैं यार. कोई बात नहीं है. 23rd August को बर्थडे आपका भी आता है मेरा भी आता है.
7: अस्सलाम वालेकुम. टिप टिप बरसा पानी. पानी में आग लगाई. सिमरन जी यही है.
0: डार्लिंग नेक्स्ट टाइम ना रेडियो का वॉल्यूम ना टिप टिप थोड़ा सा कम कर दीजिएगा क्योंकि मुझे आपकी आवाज सुननी होती है.
8: टिप टिप बरसा पानी. पानी में आग लगाई.
0: आप लोगों के जवाबों ने भी आग लगा दी डार्लिंग. सबने एकदम राइट आंसर करा है यार. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बड़ा मजा आता है यार इस गेम को खेलने में. आ लो ओवरथिंकिंग कर लो. अपने वाले एक्स को याद कर लो.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: चलो बाकी की बातें कल करते हैं शाम को 5 बजे। मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए, खाने पीने रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

गुड इवनिंग कतर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस मिडनाइट लाउंज। सो आज का शो शुरू करते हैं एक ऐसी चीज से जो ना नेटफ्लिक्स पर है, ना इंस्टाग्राम पर और ना ही किसी ऐप पर। सो आज रात कतर के आसमान में एक रेयर चीज इवेंट जो कह सकते हैं कि देखने को मिल सकता है, विच इज वीनस और जुपिटर एक दूसरे के बहुत करीब नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि साइंस से ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान की हैबिट होती है। हम हजारों साल से आसमान को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई, सिटीज बदल गई, हम बदल गए, लेकिन जब भी कोई शूटिंग स्टार दिखता है या कोई रेयर स्काई इवेंट होता है, हम आज भी रुक जाते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि आसमान हमें याद दिलाता है कि हम दुनिया के सेंटर नहीं हैं। और सच कहूँ तो कभी कभी ये भी याद दिलाना ज़रूरी होता है। आज हम नोटिफिकेशंस देखते हैं। कल रात मैं कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते मुझे याद आया कि भाई आज तो ये स्काई इवेंट होने वाला है। सो सबसे पहले मैंने सोचा कि शुरुआत इसी से करेंगे। सो हो सकता है कि जुपिटर और वीनस से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आपको खुद के थॉट्स मिल जाएं when you see the sky. So, सवाल यह है कि आपने आखिर बार कब फोन की स्क्रीन के बजाय आसमान को देखा था, वो भी बिल्कुल दिल भर के। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आजकल एक चीज ना दुनिया से गायब हो रही है, विच इज बोर्डम। और मुझे लगता है कि हम उसे मिस करेंगे। पहले लाइन में खड़े होते थे तो लोग सोचते थे कि बस का वेट करते हैं, तो ऑब्जर्व करते थे। और अब क्या होता है, 10 सेकंड खाली नहीं मिलते हमें। मतलब हर चीज़ हमारे पास बहुत हेक्टिक हो रखी है। रील्स ऑन कर लेते हैं, स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दे जाते हैं, जैसे 10 सेकंड भी खाली मिलते हैं हम अपने फ़ोन की तरफ भागते हैं। फ़ोन ऐसे मतलब हर कुछ सेकंड्स में यू नो टच करने की आदत पड़ गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च कहती है कि क्रिएटिविटी का जन्म बोर्डम से ही होता है। सो सबसे अच्छे आइडियाज़ ना आपको कब आते हैं, आपको पता है, जब आप अकेले होते हो और आपके पास इवन फ़ोन भी नहीं होता। सो इट्स लाइक वॉक करते टाइम पर आइडियाज़ आ जाते हैं, या फिर जब आप खाली बैठे होते हो, क्योंकि उस वक्त ब्रेन को थोड़ा सा खाली स्पेस मिलता है। हम इतना एंटरटेन हो गए हैं कि सोचना भूल गए हैं। तो अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल सी यू नो एक चीज़ बताती हूँ कि अगली बार लाइफ में क्यू में या सिग्नल पर कभी भी फ़ोन मत निकालिएगा, बस देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, शायद कोई आइडिया आ जाए या फिर खुद से मुलाकात करने का वक्त मिल जाए। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज।

एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है कि आप ना सिर्फ एक इंसान नहीं हो, सो आप कई सारे इंसान हैं. मतलब मम्मी के सामने अलग, बॉस के सामने अलग, दोस्तों के सामने अलग, सोशल मीडिया पे अलग, और फिर एक वर्जन होता है जो सिर्फ आप जानते हैं. वो वर्जन जो रात को 2 बजे एक्टिव होता है, जो सपने देखता है, जो डरता है, जो ओवरथिंक करता है, और जो कभी कभी दुनिया से बिल्कुल अलग फील करता है. शायद मैच्योरिटी का मतलब परफेक्ट बनना तो बिल्कुल भी नहीं है. शायद मैच्योरिटी का मतलब है इन सब वर्जन को एक्सेप्ट कर लेना. आज का सवाल बहुत ही सिंपल है आपसे कि दुनिया आपको जिस तरह से देखती है, क्या वो वैसे ही है जैसे आप सच में हैं, या फिर आपने जैसा दिखाने की कोशिश की है दुनिया को आप वैसा दिखाते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और ये है मेरा शो जिसका नाम है मिडनाइट लाउंज. एवरीडे आई टॉक अबाउट सम रैंडम थिंग्स. और आज मुझे ऐसा लगा कि यार जब मैं ऑफिस जाती हूं तब मैं कितनी एक्टिव रहती हूं, लोगों से बात करना मूड है नहीं है, बट यू नो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. पर जैसे ही मैं घर आती हूं मेरी पर्सनैलिटी बहुत शांत हो जाती है. सो वी ऑल हैव दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, आई एम श्योर आपकी भी होगी. बताइए मुझे 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

सो लग्जरी का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है, मतलब बिजनेस क्लास, लग्जरी कार या कोई लग्जरी होटल। लेकिन सच बताऊं, जिंदगी की बेस्ट लग्जरी फील तब होती है जब फ्रेश बेडशीट आप बिछाते हो, सैलरी जब क्रेडिट का मैसेज आ जाता है, लॉन्ग डे के बाद एक बढ़िया सी कड़क चाय मिल जाती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। घर से आया एक वॉइस नोट, मतलब मुझे तो वो भी लग्जरी लगता है, या फिर फ्राइडे मॉर्निंग्स मुझे तो वो भी लग्जरी लगती है। और वो फीलिंग जब अलार्म से पहले आँख खुल जाए, हम बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं और इतना भाग रहे होते हैं कि छोटी खुशियाँ ना इतनी इग्नोर हो जाती हैं कि लगता है कि ये तो बस नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो लाइफ की क्वालिटी ना बड़ी अचीवमेंट से नहीं बनती, बल्कि डेली मोमेंट से बनती है। तो आज मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अगर दिन भर में आपके घर पर आपकी बात हो चुकी है, आपके अकाउंट में एक अच्छी खासी सैलरी है, या फिर आपके पास घर में वो सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली ज़रूरत है, तो आप लग्जरी फील कर सकते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।
2: ये है

सो दिस इज द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट बुक जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड. मतलब इस किताब के नाम में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा. आज की किताब का टाइटल ना काफी डेंजरस है. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो आप पहले सुनने में ऐसा लगता था कि ये ईगो की किताब होगी, लेकिन नहीं, ये फ्रीडम की किताब है. बुक एक सिंपल सवाल पूछती है कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या लोगों के एक्सपेक्टेशंस. हम सबको पसंद आना है, हमको सबको इम्प्रेस करना है, सबको खुश रखना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मिशन कभी कंप्लीट नहीं होता. सो कोई ना कोई हमेशा ना अनहैप्पी रहेगा, और शायद इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपका काम सबको खुश रखना नहीं है, आपका काम है मीनिंगफुल लाइफ जीना. सो यू टेल मी कि ऑफिस में दिन भर में कितनी बार होता है कि आपको लगता है यार मुझे क्यों एंटरटेन करना पड़ रहा है, बट यू हैव टू डू. सो आखिरी बार आपने कोई डिसीजन सिर्फ अपनी खुशी के लिए कब लिया था? 3311106 इज माई व्हाट्सएप नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

हम अक्सर पूछते हैं कि भाई कतर आकर सबसे डिफिकल्ट क्या था, तो आज सवाल थोड़ा सा उल्टा करते हैं, सबसे अच्छा क्या था। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज। सो शायद कॉन्फिडेंस, शायद इंडिपेंडेंस, शायद पहली बार आपने कुछ खुद से डिसाइड किया हो, डिसीजन खुद लेना स्टार्ट किया हो, शायद नए कल्चर को समझना। हर किसी की कहानी में स्ट्रगल तो होता है लेकिन ग्रोथ भी होती है, और कई बार ग्रोथ इतनी धीरे होती है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो आज पीछे मुड़कर जब आप देखोगे तो इंसान ना पहली बार जब अपने घर से बाहर निकलता है, मान लीजिए आप जब पहली बार कतर आए थे तो आपने क्या फील किया था, और वो इंसान आज भी क्या सेम है या उसमें कुछ फर्क है। कतर ने आपको सबसे बड़ी क्या चीज सिखाई है। 3311106 माय नंबर। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने हमेशा बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी हेल्प ली है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एवरी डिसीजन, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें करना हो, मैं सब कुछ खुद से करती हूँ, खुद से डिसाइड करती हूँ, और मुझे समझ में आता है कि यार चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं होती। 3311106 माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

कुछ गाने ना बड़े अजीब होते हैं, यू नो, जब आप उसको 18 साल की उम्र में सुनते हो तो वो डांस करने का मन करता है, जब उसे 30 साल की एज में सुनते हो तो लिरिक्स समझ आते हैं, और जब 40 में सुनते हैं तो याद आ जाता है कि गाना सेम, बिल्कुल सेम लगता है। हम बदल जाते हैं, और शायद इसीलिए म्यूज़िक इतना पावरफुल है कि वो हमारी लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स में अलग मीनिंग लेकर आता है। You are listening Radio All at 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, ये है Midnight Lounge, और you know, गानों की जब भी बात आती है तो मैं बहुत ही ज़्यादा you know, खुश हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा you know, पार्ट है, जहाँ पर आई फील कि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। सो शायद इसीलिए म्यूज़िक इतना पावरफुल होता है, वो हमारी लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स में हमें अलग मीनिंग देता है। सो आज मेरा आपसे सवाल है कि कौन सा गाना है जो आज आपको पहले से बिल्कुल अलग लगता है, आपको लगता है कि यार ये गाना जब 10 साल पहले सुनते थे या 15 साल पहले सुनते थे तो एकदम अलग लगता था। मतलब मुझे तो हर गाने में ये चेंजेस नज़र आते हैं, और बाय द वे जितने पुराने गाने होते हैं उतने ज़्यादा क्लासिक होते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा

अभी लेट्स प्ले अ गेम, एक इमेजिनेशन गेम खेलते हैं। मान लीजिए आज की रात बोल सकती तो वो आपसे क्या कहती। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफकोर्स मिडनाइट लाउंज। सो शायद वो आपसे कहती कि यार स्लो डाउन, शायद कहती कि स्टॉप वरिंग, शायद कहती कि टेक अ रिस्क, और या फिर सिर्फ इतना कि यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ना खुद से बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और कभी कभी हमें किसी और की नहीं खुद की परमिशन चाहिए होती है, खुश होने के लिए, रेस्ट करने के लिए, गलती करने के लिए और फिर से शुरू करने के लिए। तो आज रात सोने से पहले अगर ये रात आपको एक मैसेज भेज सकती तो वो क्या होता। 3311063 माय नंबर। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, सो गुड नाइट कतर। और आसमान देखना मत भूलेगा, क्योंकि जब आप आसमान देखते हो तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली कितनी सारी चीज़ें हैं आपके अराउंड। सो फॉर नाउ बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पर। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे सुदेव को बिंदास मॉर्निंग में। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास। चांदनी रात

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे सुदेव को बिंदास मॉर्निंग में। मॉर्निंग अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मेरा बाबा

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।